ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है।

0: इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:05 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का विचार। आज का विचार में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा का के विचार। विषय है दूसरों की बुराई ना करें।
3: जैसा मन है वैसा ही संसार बनता चला जाता है, इसलिए मन को सात्विक और सरल रखना बहुत आवश्यक है। परंतु हमारा मन संसार चर्चा में बुराई का रास्ता चुनकर हमारे अंतःकरण को मैला कर देता है, जिससे हम खुद तो अशांत होते ही हैं, हमारे आसपास का संसार भी अशांत हो जाता है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे कि दूसरों की बुराई करने से पहले हमें खुद बुरा बन

0: ना पड़ता है। हम पहले बुरे होते हैं, पश्चात इसके हमारा संसार और संस्कार भी बुरे होते चले जाते हैं और हम बुराई के अंतहीन सिलसिले में पड़ जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। ये दोहा सिद्ध करता है कि बुरा ये संसार नहीं है, वस्तुतः हम खुद पहले बुराई के शिकार होते हैं। आज देखने में आता है कि रिश्तों के बीच एक दूसरे की बुराई करने का रिवाज सा चल पड़ा है, जहां दो व्यक्ति या अधिक मिलकर अन्य तीसरे की बुराई करते हैं। वो तो ऐसा है, उसने ये किया, उसने मुझे बुरा कहा। बुरा वो खुद है, वो तो नंगा है, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, वो तो नीच है, वो तो गंदा है। इसलिए आम रिश्तों में इतनी खटास पैदा हो गई है, घर के घर टूट रहे हैं और मनुष्य का जीना दुष्कर और दुभर होता गया है। हमारे कान बुराई के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, इससे हमारे संबंध खराब तो होते ही हैं, हमारा विकास भी रुक जाता है। और कमाल ये है कि कुछ लोग दोनों तरफ बुराई करते हैं। अभी मैं जिस व्यक्ति को बुरा कह रहा था, किसी तीसरे के सामने कुछ ही देर में दूसरे के मिलने पर उसके सामने तीसरे की बुराई आरंभ कर देता हूँ, उसकी कमियां गिनाना शुरू कर देता हूँ। इससे ये होता है कि क्षणिक सुख के लिए या मुख सुख के लिए मैं एक बुरे संसार की रचना के चक्कर में पड़ जाता हूँ। इसलिए बचना बहुत आवश्यक है। आजकल देखने में आता है कि सोशल मीडिया पर भी अपने ही परिजनों की बुराई गिनवाना और गिनवा गिनवा कर रीलें बनाना, जिससे वायरल होकर आप अपने व्यूअर तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन भीतर से खोखले और खाली भी होते जाते हैं। सफर में, ऑटो में, बस में, कार में दो जने मिलकर तीसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से हम में एक तनावपूर्ण समय की रचना उत्पन्न हो जाती है। माना कि कोई बुरा होता है, पर सदैव के लिए या हर एक के लिए बुरा नहीं हो सकता। जो किसी एक के लिए बुरा है, वो दूसरे के लिए अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है। बुराई करने का ये स्वभाव धीमे धीमे एक किस्म की मानसिक बीमारी बनकर रह जाता है, जिससे मुक्ति के बिना हम स्वरूप में नहीं रह पाते। इसलिए हमारे रिश्ते बीमार होते चले जाते हैं। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने अपने गुरु परंपरा में तीन बंदरों का अस्तित्व स्वीकार किया, जिसमें बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो का संदेश हम तक प्रसारित होता है। वैसे भी हमारी बुराई करने की आदत से जिसका हम बुरा चाहते हैं, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, बल्कि हम ही बुरे बन जाते हैं। हमारे चाहने वालों की संख्या निरंतर कम होती चली जाती है और हम दुनिया भर के लिए बुरे घोषित हो जाते हैं। तो आइए आज से ही दूसरों की बुराई करना छोड़कर अच्छाइयां तलाश करना आरंभ करें, क्योंकि दुनिया अच्छाई पर टिकी है, ताकि हमारा जीवन सरल और सुगम बन सके।
1: आज का विचार कार्यक्रम में अभी आपने सुने श्री प्रमोद कुमार शर्मा के विचार। विषय था दूसरों की बुराई ना करें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के 6:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ और श्री गणेश करते हैं गाइए गणपति गजवंदन के साथ FC पंवार के स्वर में।

नितिन मुकेश के भक्तिमय स्वर में अपने आराध्य श्री हनुमान जी को समर्पित भक्ति गीत सुना। भक्ति की इस पावन धारा को आगे बढ़ाते हुए अब प्रस्तुत है भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता एक अत्यंत लोकप्रिय भजन। स्वर है श्री हरिहरन का, ए हरिहरन का, और बोल है शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। श्रद्धा विश्वास

जो भक्त का हृदय अपने आराध्य के विरह और प्रतीक्षा से भर उठता है, तब उसकी भावनाएं भजन का रूप ले लेती हैं। ऐसे ही भावों को स्वर दिया है अनूप जलोटा ने। सुनते हैं कान्हा है चुपचाप।

जलोटा के स्वर में इस भक्तिमय प्रस्तुति के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। आपका जीवन सुख शांति और सद्भाव से परिपूर्ण रहे, यही हम आशा करते हैं। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बालकांड दोहा संख्या 130 से दोहा संख्या 132 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर कविता कृष्णमूर्ति के हैं, संगीत सतीश भाटिया का है।

घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी। लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

माया नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज हमने आपको सुनवाया बालकांड दोहा संख्या 130 से दोहा संख्या 132 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर कविता कृष्णमूर्ति का था और संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल अमारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, हम आपको बताते हैं कि आज प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पॉडकास्ट, जिसमें विषय रहेगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: रात्रि 9:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम साहित्य भारती का। ये कार्यक्रम भी हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे, जबकि रात्रि 10 से 11 तक समय रहेगा हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए रात्रि 10 से। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि रात्रि 8 हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण, जो कि है बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम, जिसमें वाचक स्वर रहेंगे श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति श्री रेवतराम लेखा की, जबकि संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। रात्रि 8 सुनना न भूले बीकानेर दर्पण। अब जानकारी क्रम से, अब से कुछ ही पलों में यानी कि प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें विषय रहेगा किसान उत्पादक संगठन, वाचक स्वर श्रीमती मुक्ता जैन का रहेगा। लोक भजन सुनेंगे आप 6:50 पर। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने का समय रहेगा आपके लिए 7 का, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे गोपीनाथ बारदोलई जयंती, सामुदायिक योग के लाभ और जलवायु परिवर्तन। प्रातः की सभा में फिल्म संगीत का लुत्फ आप ले पाएंगे प्रातः 7:30 पर। इसी सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 10:35 पर, और दोपहर 2:30 पर भी इसी सभा में फिल्म संगीत का लुत्फ आप ले पाएंगे। कार्यक्रम सौरभ के अंतर्गत विषय रहेगा योग बनाए निरोग, वार्ताकार होंगे श्रीमती कविता जोशी, समय रहेगा प्रातः 8:30 का। सुगम संगीत सुनेंगे आप प्रातः 8:45 पर, जबकि शास्त्रीय संगीत लोक संगीत का कार्यक्रम होगा प्रातः 9:20 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा 9:30 से 10 तक, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नज़र मोहम्मद की गाई राग भैरव, राग मिश्र भैरवी में ठुमरी और दादरा प्रातः 9:30 पर। प्रातः 10 समय रहेगा कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का, विषय रहेगा महिला सशक्तिकरण। कार्यक्रम हेलो बीकानेर प्रस्तुत होगा दिन में 11, जिसमें आज सूत्रधार रहेंगी श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की होगी और संयोजन श्री अमित सिंह का। महिला जगत हमेशा की तरह दोपहर 1:05 पर प्रस्तुत होगा। हमारी सांध्यकालीन सभा में युववाणी कार्यक्रम होगा संध्या 5:05 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा योग, इसकी तकनीकें, आसन और लाभ। फिल्म संगीत सुनेंगे आप सांध्यकालीन सभा में संध्या 6:05 पर और 9:15 पर। ग्रामीण जगत कार्यक्रम में गूंजे गाँव गुआर सुनेंगे आप संध्या 7 से। तो श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, विषय है किसान उत्पादक संगठन, वाचक स्वर हैं श्रीमती मुक्ता जैन के।
1: किसान भैया राम राम। किसान भैया एकता में ही सफलता रा राज छुपया होया करे है। यही कारण है कि भारत सरकारी योजना किसान उत्पादन संगठन बनार किसाना ने सशक्तिकरण प्रदान करनो है। इन योजना रो उद्देश्य है किसाना ने खेती किसाना में आपसी सहयोग के लिए एकजुट करनो है। हर छोटा और सीमांत किसाना ने सीधो लाभ पहुँचावनो है। इंगे तहत किसाना ने खेती सुजुड़ोड़ा कामा में आर्थिक और सामाजिक

सहयोग मिलनो चाहिए। इन योजना सू लाभ लेवन वाला किसाना ने बाजार में भी अपनी फसल रो मोल भाव करने में भी आसानी हुआ करे है। किसान उत्पादन संगठन किसाना ने एक रजिस्टर्ड ग्रुप हुआ करे है, जो खेती किसान सु संबंधित मामला में किसानारी मदद करया करे है। इनमें किसाना ने आपसी सहयोग के चलते फसलारी खरीद बिक्री करने में आसानी हुआ करे है, जिसू ज्यादा से ज्यादा किसान रा हितारी रक्षा की जा सके, एरबाने फसलारा वाजिब दाम भी मिल सके।

0: खरीद बिक्री करने में आसानी हुआ करे है। जिसू ज्यादा सू ज्यादा किसान रा हितारी रक्षा की जा सके, एरबाने फसला रा वाजिब दाम भी मिल सके। इन योजना से जुड़न वाला किसाना ने 15 लाख रुपया तक की आर्थिक सहायता भी दी जावे है, जिसू किसान कृषि मशीनरी, बीज, खाद, उर्वरक आदि खरीद कर सुनिश्चित कर सके है। इन योजना रे जरिए किसाना ने बेहतर कमाई करने रो मौको मिलिया करे है। इन योजना से जुड़कर किसान आपकी फसल रो प्रसंस्करण आदि करने में आत्मनिर्भर भी बन सक्यो है। नए किसान उत्पादन संगठन ने सरकार 3 साल में 18 लाख रुपया दे रही है, जिसू किसान आपरे पैरा पर खड़ा हो गया है। और इनमें पहाड़ी क्षेत्र ने भी इनमें किसाना ने जोड़ियो गयो है। अगर आपा किसान हाँ और किसान उत्पादन संगठन योजना रो लाभ लेनो चाहवा हाँ, तो इनरे लिए राष्ट्रीय कृषि बाजारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ename.gov.in पर जार अपने आवेदन करनो है। किसान उत्पादन संगठन किसान सदस्य द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक संगठन है। किसान उत्पादन संगठन रा सदस्य इंगी नीतियां रे निर्माण और निर्णय में सक्रिय रूप से भाग ले सके है। किसान उत्पादन संगठन की सदस्यता लिंग, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव रे बिना सभी लोगों रे लिए खुली हुए है, जो इन सेवा रो उपयोग करने में सक्षम है। हेर सदस्यता री जिम्मेवारी ने स्वीकार करने ले रे तैयार रहा करे है। किसान उत्पादन संगठन रे संचालन में किसान सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधियां, प्रबंधकों और कर्मचारियों ने शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान भी करो जावे है, ताकि वे किसान उत्पादन संगठन के विकास में योगदान दे सके है। किसान उत्पादन संगठन किसाना ने सामूहिक खेती के लिए प्रोत्साहित करे है और जोत रहे छोटे आकार से उत्पन्न उत्पादन से उत्पादकता संबंधी चुनौतियां ने भी संबोधित करो जावे है। इनके अलावा कृषि में नवीनता और उत्पादकता में वृद्धि रे अतिरिक्त रोजगार सृजन में भी सहायता प्रदान करो जाया करे है। इन किसान संगठन रे मायने सदस्यों रो एक समूह रूप में बातचीत और समझौतों करने में सक्षम बनावे है और सागे सागे वो आगात उत्पादन बाजार में किसानारी भी सहायता करिया करे है। किसान उत्पादन संगठन सदस्य किसाना ने कम लागत और गुणवत्तापूर्वक इनपुट उपलब्ध करा सके है। उदाहरण के रूप में फसला रे लिए ऋण हो, मशीनरी खरीद है, कृषि जिया की बीमे उर्वरक हो गया, कीटनाशी और कृषि उपज रो प्रत्यक्ष विपणन भी इन्हें संदर्भ हुआ करे है। किसान उत्पादन संगठन रे रूप में एक सामाजिक पूंजी रो विकास हुए है, क्योंकि इनमें किसान उत्पादक संगठन में लैंगिक भेदभाव ने दूर करने और संगठन रे निर्णय लेने री प्रतिक्रिया में महिला किसानारी भागीदारी में भी सुधार कियो गयो है। इनके अलावा सामाजिक संघर्ष ने कम करने के सागे ही समुदाय में बेहतर भोजन एवं पोषण ने बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध हुयो है।
1: खेती भी की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता किसान उत्पादक संगठन, वाचक स्वर था श्रीमती मुक्ता जैन का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुनते हैं एक लोक भजन पुष्पा सैनी के स्वर में।

0: अभी आपने सुना लोक भजन पुष्पा सैनी के स्वर में। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापित।

श्रोताओं, सूरज की पहली किरण जब क्षितिज से आकर धरती पर गिरती है, ये जो सुनहरा रंग बिखेरती है, उसकी बूंदें मोतियों की सी चमक बिखेरने लग जाती हैं जब वो सूरज की किरणें उनसे आर पार होती हैं और पक्षियों का मधुर कलर वातावरण में जीवन का संगीत खोल देता है, तब एक नई सुबह हमारे सामने नए सपनों, नई उम्मीदों और नए संकल्प

वो क्या संदेश लेकर आती है। तो सुबह का यह समय हमें याद दिलाता है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल से लेकर सीख और आज को बेहतर बनाने का एक अवसर है। इसी ताजगी, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं मालकोंस आपका स्वागत करता हूं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल पर कार्यक्रम सुप्रभात में। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उसमें जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण विषय है। मौसम के बदलते मिजाज ने ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है कि कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं असामान्य वर्षा हो रही है और कहीं सूखे जैसी परिस्थितियां सामने आ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्रों की बर्फ पहले की तुलना में अधिक तेजी से पिघल रही है। ये केवल दूर दराज के क्षेत्रों की समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बर्फ के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ सकता है और मौसम संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसका असर वन्य जीवों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पोलर बियर हो, चाहे सील, पेंगुइन और अनेक समुद्री जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं। भोजन और सुरक्षित आश्रय की तलाश में उनके लिए बहुत कठिनता पैदा हो रही है। प्रकृति की यह समस्या अंततः मनुष्य तक भी पहुंचती है क्योंकि पर्यावरण और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन की चर्चा में अल नीनो का नाम भी अक्सर सामने आता है कि ये क्या है अल नीनो। प्रशांत महासागर में समुद्री जल के तापमान में होने वाला एक प्राकृतिक परिवर्तन है जिसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। जब प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है तो उसे लोकप्रिय रूप से गॉडजिला अल नीनो भी कहा जाता है। ऐसे समय में तापमान बढ़ सकता है, मानसून प्रभावित हो सकता है और मौसम की चरम घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। तो श्रोताओं, ये सब जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं और आगे भी मिल सकते हैं। हालांकि समाधान हमारे ही साथ है, हमारे ही हाथ है। पानी की बचत करें, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करें, वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार, जैसे छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। यदि हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तो प्रकृति भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को जीवन देती रहेगी। इसी प्रकार श्रोताओं, जलवायु और मौसम का रंग बदलता है पर एक चीज़ है जिसका रंग कभी नहीं बदलता और ना बदला है, वो है मोहब्बत, प्रेम, जिसका रंग नहीं बदलता। चलन वफा का आज भी वैसा ही है जैसा सदियों से था। प्यार का दीवानापन भी वही है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन

0: मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: श्रोताओं, आज भारत रत्न श्री गोपीनाथ बारदोलोई की जयंती है। स्वतंत्रता संग्राम के इस महान सेनानी को आधुनिक असम का निर्माता कहा जाता है। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, दूरदर्शिता और जन कल्याण का प्रेरणादायक उदाहरण रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एकता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। स्वतंत्र भारत में असम के विकास, शिक्षा के विस्तार और सामाजिक उत्थान के लिए योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। श्री बारदोलोई को उनका जीवन हमें याद सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार प्राप्त करने में नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में है। उन्होंने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि ईमानदारी, समर्पण और सेवा की भावना किसी भी व्यक्ति को जन का नेता बना सकती है। आज उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करते हैं और हम यह संकल्प लेते हैं कि अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समाज हित को प्राथमिकता देंगे। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये बात हम सीखते हैं श्री गोपीनाथ बारदोलोई के जीवन चरित्र को देखकर। हमें उनके जीवन से सदैव प्रेरणा मिलती है और मिलती रहेगी। उन्हें आधुनिक असम का निर्माता तो कहा ही जाता है। उनका थोड़ा सा अगर हम जीवन चरित्र देखें तो उनका जन्म 6 जून 1890 यानी कि आज के दिन असम में हुआ था, और उन्होंने असम का नेतृत्व करते हुए उन्हें असम के नागरिकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक नज़ीर पेश की कि किस प्रकार से एक नेतृत्व द्वारा, सच्चे नेतृत्व द्वारा विकास किया जा सकता है। तो असम के इस बेटे के जीवन चरित्र के साथ आज सुनने जा रहे हैं हम असम के ही एक और बेहतरीन एक गायक जुबिन गर्ग। सुनते हैं उनको, अब मुझको जीना है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: श्रोताओं, स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। आज की व्यस्त जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना पहले से अधिक आवश्यक भी हो गया और मुश्किल भी। ऐसे समय में योग एक प्रभावी और सरल उपाय के रूप में हमारे सामने है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने की जीवन पद्धति भी है। जब योग सामूहिक रूप से किया जाता है, तब उसके लाभ और भी बढ़ जाते हैं। सामुदायिक योग लोगों

वो एक दूसरे से जोड़ता है, प्रेरित करता है और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देता है। बहुत से लोग यह सोचकर योग से दूरी बनाए रखते हैं कि यह कठिन अभ्यास है, जबकि योग की शुरुआत कुछ मिनटों के व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और सरल आसनों से भी की जा सकती है। आवश्यकता केवल नियमितता और सकारात्मक सोच की है। श्रोताओं, जो लोग अभी तक योग से जुड़े नहीं हैं, उन्हें प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना है। जब परिवार और मित्र योग के सकारात्मक परिणाम देखते हैं तो वे भी स्वाभाविक रूप से इससे जुड़ने के लिए प्रेरित हो ही जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी निकट है, आप जानते हैं, तो ये एक अवसर है कि केवल योग करने का नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की दिशा में एक स्थायी कदम उठाने का, बढ़ाने का और आगे बढ़ते जाने का। यदि हम अपने साथ किसी एक और व्यक्ति को भी योग से अगर जोड़ लेते हैं, क्योंकि योग का अर्थ ही है जोड़ना, तो यह समाज के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। योग हमें सिखाता है कि शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो, तो जीवन की राह अधिक सरल और सुखद बन जाती है। श्रोताओं, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ ही रहा है। हम बता दें कि इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2014 में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद हुई है। तो हमारे लिए कितना गर्व का विषय है, आप सोच सकते हैं। पूरा विश्व भारत के योग के आसनों पर अपनी सुबह को स्वागत करेगा 21 जून को। कहीं ना कहीं यही भाव है जो हमें विश्व गुरु की ओर ले जाता है। 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, यानी कि ग्रीष्म अयनांत है, और योग परंपरा में इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो श्रोताओं, योग आज केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का रूप ले चुका है। करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं और योग हमें सिखा रहा है कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन ही सच्ची समृद्धि का आधार है। तो क्यों ना इसे अपनाएं, और न सिर्फ अपनाएं बल्कि योग करें, यानी कि अपने साथ अपने मितवा को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को मिलकर योग करें और आगे बढ़ें।

श्रोताओं, उम्मीदों की धूप यूं ही आपके जीवन को आलोकित करती रहे, सपनों के पंख आपको हर नई ऊंचाई तक ले जाते रहें, हर सुबह एक नया विश्वास लेकर आए, हर दिन एक नई सफलता की कहानी लिखे। मुस्कान, स्वास्थ्य और सकारात्मकता आपके जीवन में एक स्थायी भाव की तरह बने रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मैं मालकोन साहब से विदा लेता हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं फिल्म जब वी मेट के इस बेहतरीन गीत के साथ। मोहित चौहान का स्वर है, संगीत है प्रीतम का। ना है ये पाना और ना ही खोना है, तेरा ना होना होना ही है, क्योंकि तुमसे ही दिन होता है, तुम ही से शाम आती है, तुमसे ही।

प्रेमत्व, अपनत्व और जीवन की मधुर अनुभूतियाँ, बहुत कुछ घुला था इस गीत के अंदर। ज़रूर आपके मन को छुआ होगा इस गीत ने। अब बढ़ते हैं आगे और अपने सुबह को थोड़ा सा रॉकिंग बनाते हैं। सुनते हैं जो अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गीत अपने मधुर संगीत और युवाओं की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने का एक बेहतरीन माध्यम रहा है। फिल्म का नाम है

रहना है तेरे दिल में। तो ये गीत उन मासूम अभिव्यक्तियों को, अनुभूतियों को आपको बेहद खूबसूरती से व्यक्त करेगा। प्रीति और पिंकी तथा साथ में है विशाल गाने वाले, और संगीत है विशाल शेखर का।

मोहब्बत में जब यादों और इरादों की बात आती है तो जुबान पे एक ही बात ठहर जाती है कि मेरा जीना और मरना सिर्फ तुम्हारे लिए है। सुरों के सफ़र में हमारी तीसरी पेशकश भी कुछ इस एहसास को ही बुना के ही बनाई गई है। फिल्म दम, इसका संगीत, इसकी लहर कमाल की थी। संदीप चौटा ने संगीत को रचा था, इसे अपनी जादुई आवाज़ से सजाया है वर्सेटाइल सिंगर सोनू निगम ने। और चलिए आइए डूब जाते हैं मोहब्बत के समंदर में, जीना सिर्फ तेरे लिए।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं फिल्म दिल से का ये गीत। टाइटल सॉन्ग है AR रहमान का संगीत और लिखा है इसे गुलजार ने। स्वर है AR रहमान का, अनुराधा और अनुपमा साथ दे रही हैं दिल से रहे।

0: दिल से बजाए गए इन गीतों को हो सकता है आपके दिलों को छुआ होगा इन गीतों ने। तो संपन्न करते हैं आज के फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो

0: 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान

0: समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: भारत की आर्थिक वृद्धि में

0: बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the

0: with a final round victory over Germany's Vincent Kaimer. Pragyanand, who began the day in third place, secured a crucial classical win worth 3 points to finish with 18 points and sealed the title. The 20-year-old from Chennai achieved a feat that had eluded Indian chess legend Vishwanath Anand and reigning world champion D. Gukesh since the tournament began in 2013. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. Almost all the dailies quote the Prime Minister's statement regarding strong economic growth, with the Indian Express's headline being Financial Year 26 growth estimate raised to 7.7%. Momentum strong. The paper also adds to draw funds, prop rupee, government scraps, FII, capital gains, withholding tax on bonds. While the Financial Express reports economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops CoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanand scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रातः के 8:30 हुए हैं. अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सौरभ. सौरभ कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक वार्ता, योग बनाए निरोग. वार्ताकार हैं श्रीमती कविता जोशी.
3: पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया. इसी कहावत को जीवन सूत्र मानते हुए हम भारतीय सदियों से अपना जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं. हजारों वर्ष पूर्व हमारे देवों और ऋषि मुनियों ने सदियों की घोर तपस्या, ध्यान, शोध और परीक्षणों के आधार पर सुखी और स्वस्थ जीवन से संबंधित नियम, सिद्धांत और कर्तव्य प्रतिपादित किए थे. उन्हीं में से एक है योग, यानी कि साधना. योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात तन व मन का सरल सामंजस्य ही योग कहलाता है. योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एकजुट होना. योग मूल रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर ध्यान केंद्रित करता है. पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया था. इस पहल की शुरुआत सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की थी. इस दिन करोड़ों लोगों ने विश्व में योग किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी. ऐसा माना जाता है कि प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफ़ी पहले योग का जन्म

हो चुका था। योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु भी माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में श्री कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दे दिया। महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। इन्होंने योग सूत्र की रचना की, जिसमें अष्टांग अभ्यास के 8 तत्व जो समाधि में परिणत होते हैं। ये 8 तत्व यम यानी कि संयम, नियम यानी कि पालन, आसन यानी कि योग मुद्रा, प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण और प्रत्याहार यानी इंद्रियों को वापस लेना, धारणा यानी मन की एकाग्रता, ध्यान और समाधि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ समाज व स्वस्थ देश का निर्माण कर पाएगा। यदि हम मनुष्य स्वस्थ है तो हम अपने सभी कार्य को पूर्णतः ईमानदारी और सच्चे मन से कर पाएंगे, और यदि मनुष्य का स्वास्थ्य खराब है तो वह किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पाएगा। इसलिए योग का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम मिलता है, हमारे दिमाग को शांत रखने में मदद मिलती है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि योग हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। महर्षि पतंजलि ने अपने द्वितीय सूत्र में योग को योगश्वित वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है। योग मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। नियंत्रण में दो पहलू होते हैं, किसी वांछित विषय अथवा वस्तु पर ध्यान को एकाग्र करने की क्षमता और लंबे समय तक शांत रहने की क्षमता। पहले पहलू यानी कि एकाग्रता को हम विकसित कर रहे हैं, किंतु मनुष्य की दूसरी क्षमता मौन और शांत रहने का कार्य कभी कभी ही हो पाता है। इसलिए योग में दूसरे पहलू पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। योग वशिष्ठ, जो योग पर सर्वोत्तम ग्रंथ है, मन प्रश्मनो उपायः योगः इत्याभिधीयते, अर्थात योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है। यह मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को रोकने की एक कठोर यांत्रिक या स्थूल प्रक्रिया नहीं, बल्कि कुशल व सूक्ष्म प्रक्रिया है। योग मन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक कौशलपूर्ण विज्ञान है। यह पूर्णता की अंतिम स्थिति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया अथवा एक तकनीक के रूप में विख्यात है। योग को उच्च शक्ति और क्षमताओं की स्थितियों के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसे मौन की अंतिम स्थिति के रूप में भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त योग को समस्त रचनात्मक कार्यों की शक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, अर्थात आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सफलता हो या असफलता, समान भाव रखते हुए आसक्ति को त्याग कर और योग में स्थिर होकर कर्म को करते रहना चाहिए। यही समत्व भाव ही योग कहलाता है। योग भारतीय ज्ञान की हजारों वर्ष पुरानी शैली है। हजारों मूर्तियां इसके संबंध में योग की स्थिति में अभी तक प्रमाणिक रूप में है। गीता में अनेक बार योग शब्द का उल्लेख किया गया है। योग

0: के प्रसिद्ध ग्रंथों में पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में योग की महत्ता अद्भुत वर्णन किया गया है। योग के 8 तत्व 8 अंगों को अष्टांग कहते हैं, जिससे 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग में प्राणायाम में प्राण का अर्थ है जीवन की शक्ति एवं आयाम का अर्थ है ऊर्जा पर नियंत्रण, अर्थात श्वास लेने संबंधी कुछ विशेष तकनीकों द्वारा जब प्राण पर नियंत्रण किया जाता है तो उसे प्राणायाम कहते हैं। योग साधना का महत्व भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है, जिसका प्रचार प्रसार भारत के ऋषि मुनि और संत समय समय पर देश के कई स्थानों से लेकर विदेशों में भी समय समय पर करते आए हैं, जिसमें से एक नाम स्वामी विवेकानंद का भी है। योग आज केवल एक व्यायाम ही नहीं रह गया, बल्कि इसमें वह आध्यात्मिक शक्ति भी है जो विश्व के सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधकर सद्भावना और शांति स्थापित कर सकती है। योग हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है, यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है। योग के दैनिक अभ्यास से कई अतिरिक्त लाभ है, यह आपके लचीले मन मुद्रा में सुधार करता है, जोड़ों को स्वस्थ रखता है, रक्तचाप को कम करता है, मोटापे को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद भी करता है। योग का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग और चौथा है क्रिया योग। योग आसन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अर्धचक्रासन, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन आदि भी शामिल है। योग आत्मनिदान है, जहां यह शरीर को ठीक करता है और बनाए भी रखता है। बेशक यह डॉक्टर की जगह तो नहीं लेता, लेकिन यह निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाने की संभावनाओं को रोकता है। आज मानव जीवन की बढ़ती हुई व्यस्तता के कारण हम अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यदि समय रहते हमने योगाभ्यास नहीं किया तो हम रोग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए अपनी दिनचर्या में से कुछ समय योग के लिए निकाले, ताकि एक स्वस्थ जीवन भी जी सके। आधुनिक मनुष्य को आज योग की अत्यधिक आवश्यकता हो गई है। मन और शरीर अत्यधिक तनाव, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। व्यक्ति के अंतर्मुखी व बहिर्मुखी स्थिति में असंतुलन सा आ गया है। विष्णु पुराण के अनुसार योगः संयोग इत्युवत् जीवात्मा परमात्मने, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग है। देखा जाए तो योग एक जीने की कला है, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। इस प्रकार योग के महत्व को देखते हुए आज पूरा विश्व इसे पूरे मनोयोग से अपना रहा है। योग विद्या को वेदों में विशेष स्थान प्राप्त था। योग के इसी महत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा योग की बढ़ती हुई स्वीकारोक्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस तरह की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लोगों तथा समाजों एवं संस्कृतियों के मध्य सांस्कृतिक वार्ता बनाए रखने में मदद करती है। इस स्वीकृति से पूरे विश्व को लाभ पहुंचता है और विश्व का कल्याण होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्।
1: सौरभ, कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता योग बनाए निरोग। वार्ताकार थी श्रीमती कविता जोशी। लीजिए अब सुनते हैं एक सहगान।

अभी आपने सुना एक सहगान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अदनान सामी के स्वर में इस बेहतरीन गीत के साथ।

0: सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं मीर की एक गज़ल रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ के स्वर में। इश्क में दिल को सब्र ताप कहाँ, उनसे नजरें मिली तो फिर ख्वाब कहाँ।
1: मेरे वालिद रोजो शब खुदा की याद में रहते थे, कभी मौज में आते तो फरमाते बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाने में मुतसर्रिफ है, अगर इश्क न होता तो नज्म कुल कायम नहीं रह सकता था। बेश्क जिंदगी वबाल है, इश्क में जी की बाजी लगा देना कमाल है। इश्क बनाता है, इश्क ही कुंदन कर देता है, दुनिया में जो कुछ है इश्क का जहूर है। आग इश्क की सोजिश है, पानी इश्क की रफ्तार है, खाक इश्क का करार है, हवा उसका इस्तरार है, मौत इश्क की मस्ती, जिंदगी इश्क की होशियारी है, रात इश्क का ख्वाब और दिन इश्क की बेदारी है, नेकी इश्क का कुर्ब है, गुनाह इश्क की दूरी है, जन्नत इश्क का शौक है, दोज़ख इश्क का शौक है। कौन मकसद को इश्क बिन पहुंचा, आरजू इश्क मुद्दा है इश्क, सारे आलम में भर रहा है इश्क।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि भारत हरित भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। वे आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का हर व्यक्ति

0: व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
1: हमारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस है, उसे लेकर के हमारी ग्राम चौपालें लगातार चल रही हैं। अभी गांव वालों के साथ यहाँ के बिजली की, पानी की, खेती की, क्यारी की, यहाँ और क्या हो सकता है उसके लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। गांव की यहाँ पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो मेरे गाँव के नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा। हम सरकार रोजगार देना चाह रही है, हम प्राइवेट स्तर पर भी देना चाह रहे हैं और वो निजी अपना कोई कारोबार प्रारंभ करें इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से आज मैं इस खारी का लांबा गांव में हूं, ये बहुत अच्छा गांव है। निश्चित रूप से हमारी सरकार का और डबल इंजन की सरकार का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने खारी का लांबा ग्राम पंचायत में नया कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने और कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित करने की घोषणा की। साथ ही विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया। जयपुर में इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन के इस फूड एक्सपो का कल शुभारंभ किया। ये एक्सपो राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से लगाया गया है। एक्सपो का उद्देश्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मंच उपलब्ध कराना है जिससे व्यवसाय विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों और के संवर्धन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: हमारे व्यापारियों के द्वारा फूड एक्सपो का यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अपने स्टॉल लगाई है और एक छत के नीचे हर प्रकार की ब्रांड, हर प्रकार की चीजों की यहाँ प्रदर्शनी लगाकर निश्चित रूप से व्यापार जगत को एक छत के नीचे लेकर जो ये एक नवाचार किया है, इससे व्यापार बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति, हर ग्राहक और हर व्यापारी एक दूसरे से मिलकर हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है, व्यापार बढ़ सकता है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर जिले में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: इसमें सीमावर्ती क्षेत्र की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिवर्ष 163 का ये ऑर्डर निकलता है जिसमें कि ये प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती जो जैसलमेर जिले की सीमा पर हम पाई जाती है वो यही है कि जो पाकिस्तानी सिम है वो यहाँ 3-4 किलोमीटर तक उसका

0: वो फंक्शनल रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने गृह मंत्री महोदय की जानकारी में भी हम लोग लेके आए थे। रूटीन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक हमारी सालाना एक एक्सरसाइज रहती है, जिसके तहत फिर हम लोग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई हुई।
1: राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचारों के लिए आमंत्रण मांगे हैं। विभाग की सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के प्रभावी समाधान, आजीविका बढ़ाने, सतत विकास तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले नवाचारों को पहचान प्रदान करना और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। विभाग ने ऐसे नव प्रवर्तकों, किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से अपने नवाचार प्रस्तुत करने को कहा है। इच्छुक प्रतिभागी अपने नवाचार का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में कल दिन का पारा 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं जयपुर में 7.2, कोटा में 6.6, अजमेर में 6 और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रात का पारा भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए मौसम तंत्र का असर अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और बरसात होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। कहा, राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की। और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत कर रहे हैं हम ये कार्यक्रम।

0: क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति, उसकी हालात देखे तो कैसा लगा आपको?
0: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान।

0: सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
1: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी।
2: कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, हमारी मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com।
1: यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
0: इस अभियान में गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
1: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं, तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
0: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
1: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी, और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
0: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
1: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
0: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
1: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा, जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते, तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे, लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
0: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
1: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
0: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
1: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं, और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
0: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
0: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
0: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है, तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े, कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया।

0: जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह यह कार्य करके यह साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़। प्रातः के 9:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं अब्दुल शकूर सुलेमानी के स्वर में जंगल मंगल देश मारो प्यारो लागे सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कालूनाथ एंड पार्टी को।

कालूनाथ एंड पार्टी के स्वर में इस लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नज़र मोहम्मद के गाए शास्त्रीय ठुमरी और दादरा। शुभारंभ करते हैं नज़र मोहम्मद के गाए राग मिश्र भैरवी में ठुमरी। बोल है आन पड़ी मंझधार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गायक नज़र मोहम्मद की राग भैरवी में गाई ठुमरी, बोल हैं प्रीत किए पछताए, तबले पर संगत कर रहे हैं रहमान खां।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुनी नज़र मोहम्मद की गाई राग भैरवी में ठुमरी, बोल थे प्रीत किए पछताए, तबले पर संगत कर रहे थे रहमान खां। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।
1: This is Akashvani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
2: Vishesh Shrinkhla, Modi Sarkar ke 12 saal ke antargat aaj suniye, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
3: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the Secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in the growth and empowerment of MSMEs. Bharat Kheda ji, a warm welcome to you on this podcast.
4: It's a matter of pleasure to be here with you today.
3: And the reason why we are having this special discussion on MSMEs is the growth of the number of the entities that are in business right now, entrepreneurship, the employment that all of this has brought in, and really the contribution to the gross domestic product of the economy as well. But we'll try and simplify it for the benefit of our listeners on Akashvani. Bharat Kheda ji, agar hum isko saral tarike se dekhe, to entrepreneurship ka role kya raha hai MSMEs mein?
4: Dekhiye, MSMEs mein sabse important agar koi cheez hai, to wo hai innovation. और मैं ये समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का ये एक जरिया है, और इसी फीलिंग के साथ आज के समय में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं. इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स दिस इकोसिस्टम हैज रियली इवॉल्व्ड एंड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड आई वुड से इन इंडिया, एंड टुडे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 30% टू द GDP, 35% टू मैन्युफैक्चरिंग, 60% टू एम्प्लॉयमेंट एंड 48% टू एक्सपोर्ट्स. So that is the reason why a lot of people say it has become the backbone of the Indian economy.
3: Usually anyone engaged in entrepreneurship is looking at a business opportunity, and then they're looking to create a system to exploit that opportunity. How do you see the government supporting this energy and spirit of the entrepreneur?
4: I would say the policy support has been a major enabler for the growth of this ecosystem, and the way the policy has also, you know, transformed in the last few years, a lot of new policy interventions have come up. The definition itself of MSME has been refined, has enlarged the scope that is covered within it. Today, any enterprise with an investment of 125 crore and up to a turnover of 500 crore is classified within the definition.

0: definition of MSME. So the definition has really been enlarged for all the three categories, micro, small and medium. So they have an incentive to scale up without really getting into the fear of losing out on incentives. So they have put in investment, they have scaled up themselves, plus a lot of new enterprises who were not part of the ecosystem have now become part of this entire spectrum. And that has been possible on account of formalization of enterprises. The government has also brought out a lot of new policy interventions to give them support for various forms, for credit, for equity, for marketing. So I'm sure, you know, this has been the major contributor which has brought in entrepreneurship to the forefront.
1: Entrepreneurship by itself was always a theoretical concept in many ways, and usually when anybody looked at a career, they were looking for employment, working for somebody else. But an entrepreneur has a special spirit, and they're looking to build a business and employment is generated. And usually if you look at case studies of the United States of America, it's built on the foundation of entrepreneurship. How do you see government playing a very important role from the year 2014 till 2026 now? How do you see a shift in the thinking, the mindset, and then shaping policy?
0: You know, the government has been able to convince the youth that self-employment and entrepreneurship is a possible avenue for growth. Gone are the times when any youngster in college would only look forward to seeking government employment or employment in the private sector. So as it happens with any economy, these opportunities are always limited. You cannot keep expanding only in these sectors. So when government came up with the policy of Startup India, so that boosted the spirit of our youngsters. They anyways had the entrepreneurial spirit in them because globally these things were quite common. So they felt that probably the environment is very conducive to set up their own enterprise. And they have also been deriving satisfaction out of the fact that instead of seeking employment, now they are giving employment. So this has really pulled the Gen Z, the new generation, into the fold of this MSME ecosystem. And I feel the government's proactive policies have been a big enabler in this direction.
1: So agar hum entrepreneurship ki baat kare and we talk about MSMEs in that regard, Bharat Kheda ji, how do you see the role of human resources and finance, especially trade finance?
0: Aap dekhein, kisi bhi enterprise ke liye, सबसे क्रिटिकल जो पेन पॉइंट रहा है वो रहा है एक्सेस टू फाइनेंस, बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू स्केल अप और इन्वेस्ट बिकॉज दे डिडंट हैव इजी एक्सेस टू क्रेडिट एज वेल एज टू इक्विटी. सो प्रोबेबली दैट हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू सम गुड पॉजिटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस. एक क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी थी फॉर पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 14 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है ताकि एंटरप्राइजेस आगे बढ़कर के आ सकें, और पिछले 3 सालों के अंदर इसमें 10 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी, 14 लाख में से 10 लाख करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी है पिछले 3 ही सालों में दी गई है. इससे भी एक सपोर्ट मिली इनको एक्सेस करने के लिए. उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इक्विटी में भी इन्फ्यूजन करने के लिए सपोर्ट प्रदान करी है. पहले भी एक फंड सेटअप किया था गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश करने का ऐसे एंटरप्राइजेस में जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इस बजट में भी एक एसएमई ग्रोथ फंड और एक टॉप अप फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ और प्रयास किए हैं. तो एक्सेस आज के समय में आसान हो गया एंटरप्राइजेस के लिए. जो सबसे बड़ी चुनौती गिनी जाती थी वो उसका एक समाधान निकला है इन इंटरवेंशन के माध्यम से.
1: अगर हम समाधान की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेशन आईपीओ के थ्रू भी हो पा रहा है, और यू हैव द निफ्टी वेयर यू हैव एंटरप्रेन्योर्स, दोज स्टार्टअप वेंचर्स आर एबल टू एक्सेस इक्विटी फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ. अलोंग विद दैट, बैंकिंग का क्या रोल रहा है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टार्टअप एंटरप्राइजेस?
0: देखिए, बैंक्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है पर्टिकुलरली फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्रेडिट. बैंक्स आर जनरली इंसिस्टेंट ऑन कोलैटरल्स व्हेनेवर समबडी सीक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक. So banks normally are cautious that it should not become a non-performing asset tomorrow. The money should not be wasted away. So that is the reason why they exercise due diligence to make sure that they are loaning it to the right party and for a right project. So they usually insist on taking a collateral also. Now these micro and small enterprises in particular normally do not have collaterals to provide to the banks. So that is where when the government steps in to provide credit guarantee, it wins the confidence of the banker also. Plus, it is a huge support to that enterprise when he has a viable project in hand and is not able to provide the collateral. It's a support to him. Plus, I think even for those institutions who are operating the ecosystem,

श्रोताओं, कहते हैं इश्क छुपाया नहीं छुपता और आंखों से बयां हो ही जाता है, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि वो बात जुबां पर आ ही जाए। सुरों के इस गुलदस्ते को शुरू करते हैं। जो पहला फूल हम आपके लिए चुनकर लाए हैं वो है, इसी कश्मकश को बड़े प्यार से और बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करता है ये गीत, फिल्म दिल लगी का ये सदाबहार नगमा है। आवाजें हैं आपके फेवरेट शंकर महादेवन और महालक्ष्मी की, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने। क्या ये सच है?

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए आखिर में सुनते हैं दलेर मेहंदी सैन जहूर अख्तर चैनल और नूरान सिस्टर्स को। ये गीत हमने लिया है फिल्म मिर्जिया से, टाइटल सॉन्ग है इसका, लिखा है से गुलजार ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

फिल्म में जिया के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 11 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। सूत्रधार हैं श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का है।

0: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो बीकानेर। ये कार्यक्रम ऐसा है जिसके माध्यम से आप और हम जुड़ते हैं और जुड़ाव ऐसा है जो दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। हमारे श्रोता जो नियमित हमें फ़ोन करते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, कई बार श्रोता हमसे कहते हैं कि हमने 200-200 बार ट्राई करा तब जा करके उनका फ़ोन लगा। तो श्रोताओं, हम सभी का धन्यवाद देते हैं कि जो इतने प्रयासरत रहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और धन्यवाद इसलिए भी है श्रोताओं कि आप सभी के कारण हमारा ये प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण बन पाता है। कुछ बातें आपकी होती हैं, कुछ हम भी आपसे बात करते हैं, कुछ संदेश जो आमजन के लिए सभी तक पहुँचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन करने वाले श्रोता तो हमारे पास फ़ोन कर पाते हैं, लेकिन हजारों लाखों श्रोता ऐसे हैं जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और ये संदेश उन तक भी पहुंचते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जो आपके माध्यम से हमें मिलते हैं श्रोताओं, और आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंचते हैं। तो ये आकाशवाणी जो है, ये जन जन की वाणी ही है जो हमें और आपके दोनों के सहयोग से लोगों तक पहुंचानी होती है। तो श्रोताओं, इसी वाणी को आगे पहुंचाते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के पहले साथी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो जी, मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मंसूर जी बोल रहा हूँ, गंगा शहर से। मैम
0: जी, मंसूर जी बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: स्वागत के लिए आकाशवाणी पूरी टीम का और समस्त श्रोताओं का धन्यवाद। मैं
0: बताएं मंसूर जी कैसे हैं?
1: हम सब अच्छे, उम्मीद करता हूँ आकाशवाणी स्वस्थ होगी और मस्त होगी।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए मौसम के हिसाब से सभी को स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और
1: हाँ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
0: हाँ बहुत जरूरी है, हालांकि बीच में दो दिन आंधी आई और उसने जबरदस्त जो है वो अंधियारा करा हमारे शहर।
1: जो भी महिलाएं मतलब दिक्कत हुई, मौसम से राहत मिल गई है।
0: जी जी बिल्कुल, हल्की सी ठंडक, हल्का सा दो दिन का अपन को आराम मिल गया। लेकिन हाँ ये बात आपकी सही है कि जो गृहणियां हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, हाँ बिल्कुल बहुत परेशानी हुई। और मंसूर जी, हमने काफी समय बाद इस आंधी को महसूस किया।
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तब कभी ऐसी आंधियां आया करती थी। हाँ बस हल्की सी आंधी आती है, ऊपर से आके निकल जाती है, लेकिन इस बार तो आंधी ने वाकई में पुराने दिन याद करा दिए।
1: जी एक संदेश देना चाहता हूँ।
0: जी हाँ दीजिए।
1: जीवन में सब्र
0: जी
1: और काम में ईमानदारी, रिश्तेदारी में वफादारी, ये रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य हो
0: जी,
1: चाहे रिश्तेदारों के साथ वफादारी से होता है, दोस्ती का रिश्ते का हो
0: जी,
1: निभाना चाहिए। और सब्र जीवन में होना सबसे जरूरी है, क्योंकि समय रुकता नहीं है, धीरे धीरे चलता है, सब बदल जाता है,
0: सब बदल जाता है। कल मैं एक कहानी पढ़ रही थी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बहुत ही खूबसूरत बात थी कि जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है, समय की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बदलता जरूर है।
1: जी जी, जी, है ना, बड़ी बात है।
0: हाँ।

0: हाँ,
1: बहुत
0: क्योंकि एक जैसा ही समय रहे तो फिर तो इंसान शायद मेरे ख्याल से पागल ही हो जाए,
1: जी,
0: है
1: कहते
0: ना?
1: हैं ना कि जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है
0: आज
1: वैसा कल नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आज और कल की जो रीति है, नीति है, ये हमेशा चलती रहती है। और हम इसी आज और कल में, देखिए कितना लंबा जीवन तो हम लोग गुजार चुके हैं, और आने
1: बिल्कुल
0: वाला
1: सही,
0: समय भी हम इसी उसमें गुजारेंगे कि आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो परसों तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
1: नहीं होगा। जी,
0: जी
1: मित्रों का नाम ले लें, फरियाद
0: जी हाँ लीजिए सर।
1: अली उर्फ कौल भाई, राजू भाई, गोपाल भाई, पुरुषोत्तम पंचारिया, गंगा शहर से।
0: जी अब गाना बता दें, कौन सा सुनना चाहते हैं मंसूर जी?
1: मुझे गीत सुनना है, ईरान दा फिल्म से, इसे
0: हाँ जी
1: गाया है मोहम्मद रफी साहब ने, गीत को लिखा है कैफी आजमी ने,
0: जी
1: संगीत मदन मोहन का है, और गीत के बोल हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा गाना आपने चयन किया। और देखिए ये दुनिया ये महफिल काम की तो बहुत है।
1: बहुत काम किया मैम, जब भी कुछ कोई ख्याल आ जाता है तो लगता है ऐसे कि कुछ काफी
0: हाँ कई बार ऐसा होता है कि मन जब विचलित होता है,
1: ख्याल
0: जब मन के अनुरूप कोई काम नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में क्यों
1: आता
0: क्यों ये सब कुछ है, या क्यों ये दुनिया है, या क्यों ये लोग हैं।
1: वो सब नजर सामने आ जाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मंसूर जी, बहुत शुक्रिया मंसूर जी, आपने हमें फ़ोन किया, धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं ये देखते हैं हमारे अगले साथी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ जी।
0: उत्तम सोनी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद
0: जी। उत्तम जी बताएं क्या चल रहा है, कैसे आनंद ले रहे हैं आप मौसम का, गर्मी का?
1: गर्मी तो भरपूर पड़ रही है
0: जी।
1: पानी पी रहे हैं खूब और जूस वगैरह पीते हैं।
0: जी जी
1: धूप से बच रहे हैं।
0: ये सबसे अच्छी बात है। देखिए
1: यही है
0: गवर्नमेंट का अलर्ट भी है कि 12 से 4 बजे तक दोपहर के जो समय है उसमें तो हम लोगों को बिल्कुल ही धूप में जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें अवॉइड ही करना चाहिए कि हम धूप में ना निकलें उस समय पे। या अगर किसी जगह पर ऐसी पर भी है, मान लीजिए वो खुली जगह है, तो एक ही जगह पर रहें, ट्रैवल ना करें, इधर से उधर आना जाना ये वो जो है ना, वो ये 12 से 4 का जो समय है ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये एडवाइजरी भी, हाँ ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो ऐसे में जो है वो खासकर छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको तो बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: जी उत्तम जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज गीत सुनेंगे दुल्हा दुल्हन मूवी का,
0: जी
1: हमने तुमको प्यार किया है कितना, कौन करेगा उतना।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गाना देखिए, अब मैं इसको आकाशवाणी से जोड़ देती हूँ कि आपने आकाशवाणी से इतना प्यार किया है हमारे श्रोताओं ने कि शायद कोई और नहीं कर पाएगा।
1: क्या बात है, वाह जी वाह, प्रेम है आकाशवाणी के
0: जी,
1: प्रति, रेडियो के प्रति, जो हम लोग 35 सालों से जुड़े हुए हैं बराबर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
1: और अब तो और भी प्रोग्राम अच्छे आ रहे हैं ढोला मारू चैनल से।
0: जी अब वो ये सर, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, तो दिनों दिन तरक्की होती जा रही है। हाँ जी, तो टेक्नोलॉजी का
1: प्रोग्राम सुनता हूँ लगभग सारे ही।
0: जी जी बिल्कुल,
1: और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आप सबको धन्यवाद।
0: जी आपका भी बहुत शुक्रिया उत्तम जी कि आप जैसे श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और सारे प्रोग्राम आप सुनते हैं, समय समय पे हमें सलाह मिलती है तो हम और भी परिष्कृत होते चले जाते हैं।
1: बिल्कुल मैडम,
0: बहुत धन्यवाद उत्तम जी, आपने हमें फोन किया, आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए।
1: शुक्रिया जी।

0: हाँ जी, मैं हरियाणा से करेने वालों, वहाँ पे बीकानेर में रहता हूँ।
1: अच्छा, बीकानेर में रहते हैं आप, वैसे आप हरियाणा के हैं।
0: हाँ हाँ
1: जी
0: जी
1: सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
0: हाँ जी
1: पहली बार जुड़े हैं आप?
0: हाँ जी, पहली बार जुड़ा हूँ मैं।
1: जी, क्या काम करते हैं सतपाल
0: कौन
1: जी?
0: हो? मैं यहाँ पे चाय का होटल है जी, अपना चाय और चाउमीन बनाते हैं।
1: चाय और चाउमीन का कॉम्बिनेशन आप खिलाते हैं सभी को, है ना?
0: हाँ
1: जी,
0: जी
1: तो अभी जो गर्मी का मौसम है, इसमें चाय की बिक्री कुछ कम हुई है?
0: हाँ जी, थोड़ी कम है जी।
1: थोड़ी कम है, क्योंकि जबरदस्त गर्मी है अभी तो,
0: हाँ जी हाँ जी
1: है ना? लेकिन एक बात तो ये सही है सतपाल जी, कि देखिए जिनको चाय का शौक है ना, उनकी तलब चाय से ही मिटती है ना? आप कितना भी उन्हें नींबू पानी पिला दें, कितना भी ठंडा पिला दें, उन्हें कुछ भी पिला दें, लेकिन चाय की जो पीने वाले लोग हैं ना, वो चाय के लिए ही तरसते
0: बिल्कुल।
1: हैं, है ना? हाँ, तो सतपाल जी बहुत अच्छा लगा आज आप हमसे जुड़े हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। आपको कैसे नंबर मिला आकाशवाणी बीकानेर का?
0: मैं सुनता रहता हूँ जी।
1: अच्छा, आप सुनते हैं,
0: हाँ जी,
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: मैंने ट्राई कम से कम 200 बार ट्राई किया जी नंबर, तब जाके लगे जी।
1: ओहो, 200 बार ट्राई करा आपने?
0: हाँ जी
1: अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आपका नंबर आ गया, और हम बहुत आपका
0: हाँ जी
1: शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने धैर्य रखा और देखिए आपका नंबर लग ही गया। तो सतपाल जी,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा आपसे बात करके। आज गाना बताएं कौन सा सुनेंगे?
0: शोले फिल्म का जी, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
1: अच्छा, तो दोस्ती यानी कि आपकी जो दोस्त हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास हैं,
0: हाँ जी
1: है ना?
0: हाँ जी, दोस्तों के नाम है मेनुद्दीन जी, नेत्राम जी, सुरजाराम जी, किशन
1: जी,
0: काका, नाई भाई, सूरज है जी, आयुष, प्रिंस। हाँ
1: अरे वाह
0: जी
1: जी, सतपाल जी
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये आपसे गुजारिश
0: ओके,
1: करेंगे कि आप हमेशा हमें फोन करते रहें। आप हमसे जुड़े हैं, हमें बहुत
0: बहुत
1: अच्छा
0: ठीक,
1: लगा है
0: ओके
1: ना? ये सुनते हैं आपके और आपके दोस्तों की पसंद पर दोस्ती का ये बहुत अच्छा सा गीत।
0: ठीक है।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है बुधवार को दिन में 11 बजे और इसका प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 बजे। तो आप भी हमें फोन मिला सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी। नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र।

0: से बात कर रहा हूँ दीदी।
1: महाराष्ट्र से गंगाधर जी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
1: जी गंगाधर जी, बताएं महाराष्ट्र का मौसम कैसा है?
0: मौसम तो अभी गर्मी है दीदी।
1: अच्छा, उधर भी गर्मी हो रही है क्या?
0: हाँ, तापमान 43-42 हो रहा है।
1: फिर तो सर एक जैसा सही है।
0: जी जी
1: है ना, यहाँ पे हम थोड़ा 45-46 पे पहुंच गए हैं।
0: हाँ हो, तुम्हारे अभी राजस्थान में तो पूरा बढ़ के रहता दीदी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान तो राजस्थान ही है जी, बहुत गर्मी का आलम रहता है गंगाधर जी। और थोड़ा सा ये है कि मौसम में परिवर्तन थोड़ा बहुत बीच बीच में होता रहता है, जैसे 2-3 दिनों पहले आंधी आ गई थी तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया था, थोड़ी सी राहत मिल गई थी।
0: कुछ बादल छाए थे मगर हम समझे बरसात हो जाएंगी, समझे बरसात नहीं हुई, चले गए बादल।
1: हाँ नहीं नहीं सर, बरसात तो ऐसी नहीं हुई, आसपास के गांवों में हुई थोड़ी बरसात।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: अब ये मौसम का परिवर्तन है, देखिए ऐसे ही अब
0: जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: ये सब
1: जी
0: कुदरत का खेल है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं गंगाधर जी?
0: एतबार फिल्म का किसी नजर से तेरा इंतजार आज भी है, ये भूपेंद्र सिंह की आवाज में दीदी।
1: जी, भूपेंद्र जी की आवाज में आशा जी साथ दे रही हैं उनका गाने में।
0: हाँ, आशा भोसले साथ दे
1: हाँ जी
0: रही है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अपने समय का बहुत अच्छा गाना, और आज भी जब हम इस गाने को सुनते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत
0: दीदी,
1: शांत।
0: जो कि संगीत ऐसी है तो मन को अगर छुगा तो मन दुरुस्त हो जाता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: आदमी बीमार आदमी भी अच्छा हो जाता है।
1: हाँ, और आजकल देखिए ये जो जो संगीत है इसको डॉक्टर आजकल थेरेपी के रूप में भी यूज कर रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना।
0: दीदी, सही
1: मरीज
0: कहा
1: को,
0: आपने।
1: हाँ जो भी मरीज होता है किसी भी बीमारी से जूझता हुआ, उनको गाना सुनाया जाता है, संगीत सुनाया जाता है, तो उनकी तबीयत में जल्दी सुधार होता है।
0: बिल्कुल दीदी,
1: जी,
0: एकदम 100% करेक्ट है
1: और हम तो बैठे ही गानों की दुनिया में हैं, तो देखिए आपकी और हमारी तबीयत में तो सुधार रहना ही रहना है।
0: जी।
1: जी
0: हम हर घड़ी हर पल रेडियो साथ में रहता है।
1: जी
0: आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा दीदी।
1: जी हमें भी बहुत अच्छा लगा गंगाधर जी कि
0: हाँ,
1: आपका
0: आपकी
1: फोन,
0: आवाज तो बहुत अच्छी है दीदी।
1: और हम
0: हाँ
1: चाहेंगे गंगाधर जी कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं
1: जी
0: तो कोशिश करता हूँ।
1: जी
0: आज पहली बार जुड़ा हूँ मैं बीकानेर से।
1: अच्छा, बीकानेर से पहली बार जुड़े हैं आप?
0: हाँ,
1: अच्छा, अरे वाह, ये तो
0: तो
1: बहुत
0: मेरे
1: अच्छी
0: पास
1: बात है।
0: एक बीकानेर वाला जूस सेंटर है अभी, तो उन्होंने बोला भाई बीकानेर में फोन लगाओ,
1: ओ
0: तो उसकी एक कहने पे मैं उनके पास से नंबर लेके लगाया दीदी।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है,
0: बीकानेर के श्रोता है वो
1: बीकानेर के
0: हमारा,
1: हैं।
0: कुछ मित्रों का नाम लेता दीदी
1: हाँ जी लीजिए।
0: हमारे, खास करके गौतम जी राय बोले, तुकाराम जाधव, सुनील झा, दिलीप पाहुजा, राजेंद्र गंगवार जी,
1: जी
0: उदयलाल टेलर जी, सूरज जाधव पैटन, हमारे भगवान सिंह जी परिवार मध्य प्रदेश की।
1: जी, आप सभी मित्रों के साथ में हम गंगाधर जी की पसंद पर सुनते हैं ये बहुत ही अच्छा सा एतबार फिल्म का गीत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 0151-2528-041 और 0151-2528-042। तो मिलाइए ये नंबर और जुड़िए हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम से। आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं दशरथ लाल स्वामी सागर से।
0: दशरथ जी का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत
0: जी। बताएं दशरथ जी, कैसे हैं?
1: एकदम मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप लोगों की मेहरबानी से।
0: ये आपने अच्छी बात कही कि मस्त हैं, स्वस्थ हैं आप, क्योंकि गर्मी का जो आलम है उसमें स्वस्थ रहना भी।
1: बहुत गर्मी है,
0: बहुत गर्मी है। एक चीज मुझे याद आ रही है दशरथ जी, आपने कहा था कि आप मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं
1: आप बोलते नहीं
0: नहीं, देखिए अब ये तो जब आकाशवाणी से जुड़े हैं तो बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी भी पड़ती हैं। तो ऐसे मौसम में जब गर्मी का इतना जबरदस्त प्रकोप है, तो ऐसे में आप मजदूरों के लिए किस प्रकार से थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह चेंज करते हैं या क्या करते हैं सर?
1: टाइमिंग चेंज रखा है मैम, अभी तो इतनी गर्मी है कि बुरा हाल है। मैं तो सारी लेबर को भी सुबह 7 बजे बुला लेता हूँ।
0: जी जी,
1: 7 बजे से 12 बजे तक और फिर 4 बजे से 7 बजे तक।
0: अच्छा,
1: यानी ये 12 से 4 का जो टाइम होता है गर्मी का, वो बहुत पीक टाइम होता है।
0: ये बहुत अच्छा आपने कहा दशरथ जी, क्योंकि देखिए सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की हुई है कि 12 से 4 तो आप इस धूप के दौरान बिल्कुल भी ना निकलें।
1: हाँ जी,
0: है ना। तो बहुत ही मजबूरी है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब अपन को पता है कि अपन को निश्चित जगह पर निश्चित काम करना है तो फिर अपन सुधार कर सकते हैं उसमें।
1: बिल्कुल, मैंने मतलब पिछले 1-1.5 महीने से ये कर रखा है।
0: जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए हम ये कहते हैं ना कि काम, जब आप ठेकेदार हैं और अगर आप अपने कामगारों का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी।
1: अरे ध्यान क्या, दिन में 2-3 बार तो मैं उनको नींबू पानी फिर भी पिलाता रहता।
0: पिलाता जरूरी भी है सर, जरूर। हाँ, अपना ऐसे काम से जुड़े हुए हैं अपन, तो हमें उनका ख्याल रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल ख्याल रखना जरूरी, क्योंकि कमा के देने वाली वही है।
0: हाँ जी,
1: उनका ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर अपना घर कैसे चलेगा।
0: हाँ, लेकिन एक साथ साथ में ये बात भी है कि आप स्वयं का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको भी काम की वजह से घूमना फिरना काफी पड़ता है, तो आप स्वयं का भी ख्याल रखें, है ना।
1: फिर भी मैम घूमने से इतना असर नहीं होता जितना एक जगह काम करते हैं ना लेबर।
0: वो डायरेक्ट हीट सर पे पड़ती रहती है ना,
1: डायरेक्ट हीट आती है उसको।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: घूमने वाले को तो फिर भी थोड़ा हवा लगती रहती है, विंड फीलती है उसको।
0: जी जी दशरथ जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर के कि आप एक ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपके संग में और भी लोग हैं, और वो ऐसा काम है जो बहुत ही मेहनत कश है, बहुत ही मेहनत का काम है, और आप उनका ख्याल रख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी,
0: जी। बताएं दशरथ जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनना है मेरे को फिल्म है फरिश्ते, गाने के बोल है ये रिश्ता नहीं खोने का, ये रिश्ता प्यार का रहना।
0: आपकी पसंद पर ये सुनते हैं, बहुत अच्छा सा फरिश्ते फिल्म का गीत। जी, आपने हमें फोन किया दशरथ जी, बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं, माधव कहते हैं कि विनम्र रहना बहुत बड़ी खूबसूरती है। आप जितना विनम्र रहेंगे, आप उतने ही खूबसूरत होते चले जाएंगे। खूबसूरती वो नहीं जो हमारे चेहरे में झलकती है, खूबसूरती वो है जो हमारे व्यवहार में झलकती है। तो हम जितना विनम्र होंगे, मृदुल होंगे, सहृदय होंगे, उतना ही हम अपने आप को खूबसूरत बनाते चले जाएंगे। हमारे चेहरे का तेज बढ़ता चला जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो ये खूबसूरती झलकेगी और वो उसी हिसाब से, हमारे व्यवहार के हिसाब से ही अपना भी व्यवहार बदलने की कोशिश करेगा। अगर हमारे शब्द मधुर होंगे, हमारी वाणी में मधुरता होगी, तो हम अपनी बात ढंग से कह पाएंगे और सामने वाले को समझ भी आ पाएगा। और यही समझदारी हमें अपने जीवन में भरपूर दिखानी चाहिए। माधव के इस संदेश के साथ आइए देखते हैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए कौन जुड़ा है हमारे साथ में। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सुभाष जी, का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: हाँ जी
0: जी सुभाष जी, संदेश महत्वपूर्ण।
1: संदेश महत्वपूर्ण ये है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के दरवाजे हैं, ये आदमी को नरक ले जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: इससे बचने के उपाय तो यही है कि आप कथा सुनिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। काम एक वासना है जो पहले पाप करते हैं, पहले तो सुख देता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है भयानक होता है।
0: जी जी जी।
1: पाप बच के नहीं करो, क्योंकि जहाँ अपने यहाँ वीडियो रील बनाते हैं, वैसे यमराज जी के सेक्रेटरी का नाम है चित्रगुप्त
0: जी,
1: वो क्या अपनी रील बनाते रहते हैं, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, सारा हिसाब रहता है उनके पास।
0: मतलब आपके
1: आप
0: कहने
1: कहेंगे
0: का
1: जाके कि साहब हमने पाप नहीं किया, तो रील दिखा देंगे आपको।
0: तो आपके कहने का मतलब है सुभाष जी कि अब जो टेक्नोलॉजी है ना, वो वहां तक भी पहुंच गई है कि वहां भी रील बनने लग गई है।
1: हाँ, वो तो बनाते ही हैं। आपने तो अभी चालू किया, उनके पास तो शुरू से ही है।
0: जी जी, पूरा पूरा लेखा जोखा है सर उनके पास तो।
1: लेखा जोखा है उसके पास। दूसरा है क्रोध। दूसरा क्या है, जब अपनी कामनाएं पूरी नहीं होती।

0: मन की तमन्ना पूरी नहीं तो गुस्सा बहुत आता है, गुस्से
1: बिल्कुल
0: में आदमी पागल हो जाता है।
1: जी, सही कह रहे हैं आप,
0: जिनकी
1: बिल्कुल।
0: काफी तमन्नाएं होती है उनको गुस्सा आ जाता है, और ज्यादातर धनवान को आता है, जो पैसे वाले होते हैं उनको बहुत ज्यादा आता है। और गुस्सा
1: जी
0: क्या है, बुद्धि नष्ट कर देता है,
1: जी
0: इसलिए गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा आवे तो ठंडा पानी पी लेना चाहिए,
1: और कहते भी है ना सर कि 1 मिनट का क्रोध होता है वो आपका सारा जीवन
0: हाँ,
1: बर्बाद कर सकता है।
0: और
1: हो गया।
0: मोह ज्यादा रखना नहीं चाहिए। सेवा करते हो, दया
1: हाँ
0: रखते हो, तो ये भावना रखने पर आपको यही सब कुछ मिल जाएगा, ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं।
1: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि काम, क्रोध और लोभ जो हैं, अगर हम ये तीनों से ही परे हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बीत सकती है।
0: हाँ बिल्कुल, शांति अपने में रखना बहुत
1: बहुत
0: बड़ी चीज
1: बढ़िया
0: है,
1: जी।
0: क्योंकि अपने पास संपत्ति है, शांति नहीं है। संतों के पास शांति है, संपत्ति नहीं
1: संपत्ति
0: है,
1: नहीं है,
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: कीमती ज्यादा शांति है।
1: शांति नहीं।
0: एक सवाल करता हूँ आपसे,
1: जी बताएं।
0: मैं ये जो गाने आपको देता हूँ पुराने फिल्मों के, ये 2.5 और 3 मिनट के होते हैं, इसमें
1: जी,
0: विशेषता क्या है ये बता दें जरा।
1: गानों की विशेषता सर, इनका संगीत और इनके बोल।
0: इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि जितने दूसरे श्रोता देते हैं वो 5 मिनट और 10 मिनट के गाने होते हैं,
1: जी
0: मेरा तो
1: हाँ,
0: 2.5-3 मिनट का होता है। इससे एक श्रोता और आ जाता है आपके पास
1: अरे वाह
0: मेरे। हाँ,
1: सर
0: और
1: सही कह रहे
0: दूसरा
1: हैं
0: क्या है, मैं 1960 से पहले पहले सारे गीत देता हूँ, 52, 53, 55,
1: जी
0: 57,
1: जी
0: 60 के ऊपर गया भी नहीं हूँ, और इतने रसीले और दर्द भरे होते हैं कि सुनने में भी आनंद आता
1: जी हाँ, ये
0: है।
1: बात
0: ये
1: तो सही
0: सब
1: है सर।
0: इसलिए 2.5-3 मिनट में भी क्या है कि अपना सुकून मिल जाता है, मनोरंजन हो जाता है,
1: हाँ जी बिल्कुल
0: ये
1: सर।
0: विशेषता है।
1: हाँ, आपकी दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए, आकाशवाणी के लिए, कि एक तो आपका संदेश सबसे महत्वपूर्ण होता है जो सभी तक पहुंचता है, और दूसरा जो आप गाना बताते हैं वो भी इतना अच्छा, मधुर और पुराना होता है। हालांकि बेशक पुराना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मधुर होता है और उसको सुन करके बहुत अच्छा लगता है सर।
0: हाँ, लेकिन वो नया लगता है, आप जितनी बार सुनोगे ना उस
1: हाँ
0: गाने को आपको
1: जी
0: नया लगेगा।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल। तो आज कौन सा गाना सुनवा रहे हैं सर?
0: गाना तो चंद्रकांता का है, मोहम्मद रफी की आवाज में है, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत ही मीठा
1: वाह
0: और शांत, एकदम
1: जी,
0: शांत है गाना
1: शांत
0: भी,
1: जी
0: कोई
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि तड़क भड़क हो,
1: हाँ, नहीं,
0: बिल्कुल शांत स्वभाव का।
1: आपके गाने तो सर इतने पुराने और इतने
0: आप
1: शांत और इतने मीठे सुर वाले होते हैं गाने की, वाकई में आकाशवाणी को भी गर्व महसूस होता है ऐसे गाने सुना करके।
0: ठीक है सर,
1: ठीक,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: हाँ, अजीब।
1: हरिओम।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए देखते हैं श्रोताओं अगले साथी हमारे कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं वृंदावन कॉलोनी से राजेंद्र कुमार बिडवालकर बोल रहा था।
0: जी राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी राजेंद्र जी बताएं आज का संदेश आप क्या दे रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के माध्यम से।
1: मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अपने जीवन के पश्चात अपने को नेत्रदान और रक्तदान की ओर थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, ये करना चाहिए अपने को।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है राजेंद्र जी कि नेत्रदान और रक्तदान ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो जीवन को रोशन कर सकती हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। सही समय पर अगर वक्त रहते अगर कहीं कोई ऐसा केस होता है और उसे सही ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता है, खून नहीं मिल पाता है, तो उस आदमी की जान पे बनाती है।
1: हाँ।
0: और आंखें तो देखिए, आंखें हैं तो जहान है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: है
1: वो
0: तो आंखों की तो बात ही हम जितना करें उतनी कम है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं है।
1: जी बिल्कुल सही बात है।
0: कई बार हम लोग जब जाते हैं मिलते हैं लोगों से तो कई बार दिव्यांग लोग हमें मिलते हैं।
1: अब मैं खुद इसी कैटेगरी
0: हाँ जी
1: में हूँ ना।
0: बिल्कुल वही उसी लाइन पे मैं आ रही थी कि हम तो मिलते हैं तब महसूस कर पाते हैं, लेकिन आप तो स्वयं इस चीज से जी रहे हैं, इस चीज के साथ हैं, तो वाकई में ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजेंद्र जी एक चीज में आपसे

0: जानना चाहूंगी, क्या आपकी नेत्रों की ज्योति वापस नहीं आ सकती?
1: नहीं, मेरा इसमें वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं, ये आरपी है मेरे को।
0: अच्छा,
1: होता है जिसका
0: कोई इलाज नहीं
1: के
0: है,
1: साथ साथ विजन लॉस होती रहती है। अब मेरे 95-94 इतनी मतलब लॉस हो चुकी है।
0: अच्छा चलिए, लेकिन हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और अपने घर पर अपना जैसा भी अपना समय आप व्यतीत करते हैं, जैसा कि आपने बताया था आप किचन में भी काम कर लेते हैं, आप बाकी भी काम आप करते हैं, रेडियो आप सुनते ही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी कि आप जीजी विशा के धनी हैं। आप गाना बताएं, कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: ये रात फिर न आएगी।
0: हाँ जी, हाँ बोल बता।
1: वो जगह है जहाँ मिले थे, मैं मेरे मित्र का नाम लेना चाहूंगा।
0: लीजिए सर।
1: सुरेश कुमार जी गहलोत है, वो मेरे प्रिय मित्र है, बचपन के साथी हैं।
0: जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बचपन के साथी हैं और अभी तक आप साथ हैं, ये कितनी अच्छी बात है। देखिए
1: हम साथ ही पढ़ते थे, साथ मतलब जब से अभी तक का।
0: हाँ,
1: हमारे साथ है
0: अभी। चलिए ईश्वर करे आपका साथ हमेशा बना रहे, ये दोस्ती यूं ही जिंदाबाद रहे।
1: हाँ
0: जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने हमें फोन किया।
1: जी धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है बुधवार को दिन में 11 से 12 बजे और इसका प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे। तो मिलाइए एक फोन और बनिए हमारे नियमित श्रोता। आइए देखते हैं अगला फोन हमारा किसका है। हेलो
1: मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सुनन सोलंकी, गंगा शहर से।
0: जी, लक्ष्मी नारायण जी का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी लक्ष्मी नारायण जी, बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हम साथ साथ है, ये तो सत्य है कि भगवान है
0: धरती पे रूप माँ बाप का।
1: हाँ, धरती और रूप माँ बाप का पारिवारिक गाना है, इसमें कुछ नॉलेज भी मिलता है और सीख भी मिलती है।
0: सही बात। देखिए, पहले तो फिल्म का नाम ही इतना अच्छा है कि हम साथ साथ हैं।
1: हाँ,
0: और बात अगर साथ की करें तो जब से हम पैदा होते हैं और अंतिम सांस तक न जाने अनगिनत लोगों का हमें साथ मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। और ये साथ के बदौलत ही जिंदगी चलती है, है ना। अगर कहते हैं कि अगर साथी अच्छा नहीं हो तो फिर सफर मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ, मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे हम रोजमर्रा के सफर की बात करें और या फिर हम ट्रेन वाले सफर की बात करें, बस वाले सफर की बात करें, अगर साथी अच्छा नहीं है तो फिर सफर मुश्किल होता ही है।
0: सफर मुश्किल है, चाहे एक घंटा का हो चाहे 20 घंटे का हो।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर साथी अच्छा होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, गीत के बोल हैं तो देखिए, माता पिता तो जिनका हम मोल कोई चुका ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल नहीं, पहले गुरु यही है, पहले गुरु माता पिता, उसके हाँ, बाद गुरु का नंबर,
1: गुरु का नंबर आता है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये जो मैसेजेस
0: लेता रहना चाहता हूँ परिवार का।
1: हाँ जी, लीजिए।

0: ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल नहीं, पहले गुरु यही है, पहले गुरु
0: जी
1: माता पिता, उसके
0: हाँ,
1: बाद गुरु का नंबर
0: गुरु का
1: आता है।
0: नंबर आता है बिल्कुल। तो लक्ष्मी नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये जो
1: ठीक है, नाम
0: मैसेजेस,
1: लेता रहना चाहता हूँ परिवार का।
0: हाँ जी लीजिए।
1: स्वाति सोलंकी, मेरी पत्नी का नाम है कोमल देवदत्त जी, भारती कन्यालाल जी, ममता राधा किशन जी, नीतू सुनील जी, सोनी, दीपक, पीयूष, गुंजन, दुर्गेश, किट्टू, उपासना, झलक, पूर्वी।
0: जितने भी
1: ठीक है
0: आपने
1: मैडम
0: नाम
1: जी,
0: लिए हैं सबका हम स्वागत कर लेते हैं हमारे कार्यक्रम में और सुन लेते हैं आप सभी की पसंद पर ये बहुत खूबसूरत परिवार से जुड़ा हुआ गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब भी परिवार का नाम लिया है आप
0: जी
1: सबका।
0: बिल्कुल, तो सबके साथ बैठ के सुनिए ये गीत।
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।

0: हेलो फोनिंग प्रोग्राम।
1: हाँ जी सर
0: मैं डॉक्टर अशोक कुमार साई जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से। धन्यवाद
1: जी। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में
0: जी। धन्यवाद।
1: जी
0: और
1: बताएं।
0: आज सुमन जी का गाना सुना दें कि उनकी अभी उनका इंतकाल हुआ
1: हाँ
0: है,
1: जी।
0: उनकी याद में मोहम्मद रफी और सुमन जी का गाया हुआ है
1: जी
0: जब जब फूल खिले का नाना करके प्यार तुम्ही को कर बैठे,
1: जी सुमन कल्याणपुर
0: ये
1: जी
0: गाना
1: की
0: सुना
1: बात,
0: चाहिए।
1: एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी,
0: बहुत गजब गाने
1: गजब
0: गाए
1: के
0: हैं,
1: गाने।
0: उनकी आवाज
1: हाँ
0: बड़ी मधुर थी
1: मधुर थी।
0: और ड्यूट जो गाए हैं वो तो है ही है,
1: शानदार।
0: जो जो सिंगल गाए हैं वो भी बहुत
1: हाँ
0: बहुत अच्छे गाए
1: और देखिए
0: उनके।
1: अब समय के साथ साथ देखिए लता जी चले गए, आशा जी चले गए, अब सुमन जी भी चले गए, तो पुराने जो ऐसी
0: हाँ
1: धरोहरें थी हमारे साथ में, संगीत की कला की
0: संगीत की
1: जो धरोहर
0: धरोहर
1: थे,
0: थे,
1: बिल्कुल ये धीरे
0: कला थी,
1: धीरे अब
0: बहुत
1: खत्म
0: अच्छे
1: होती जा रही है ना।
0: बहुत अच्छे लोग थे, इनके गाने इतने
1: हाँ
0: मधुर हैं
1: हाँ
0: और सदियों तक याद रखे जाएंगे।
1: बिल्कुल। डॉक्टर शाही एक चीज़ ये अच्छी है कि इनकी विरासत हमारे साथ है, इनके गाए हुए गीत हमारे साथ हैं, संगीत हमारे साथ है, तो हम इनको जब चाहें तब जी सकते हैं।
0: देखिए इन इनके गीत सुन के हम अपने आप को प्रफुल्लित कर लेते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर शाही बहुत खूबसूरत गीत सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में, आइए अपन सुनते हैं। आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, अब समय समाप्त हो रहा है हेलो बीकानेर कार्यक्रम का। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में देखिए, सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे दो श्रोता ऐसे थे जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े थे। बहुत खुशी होती है श्रोताओं जब नए श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं। देखिए, पुरानों का तो महत्व है ही हमारे लिए, लेकिन जब नए श्रोता जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे ही कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और ये आकाशवाणी की जो पहुँच है ये दूर दूर तक पहुँचती है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो हमारे आज इस कार्यक्रम में ये दो श्रोता जुड़े जिनका हमने स्वागत किया, और बाकी तो हमारे नियमित श्रोता जो थे वो थे ही। इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आकाशवाणी बीकानेर की पूरी टीम का सहयोग रहा। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी बरखा थानवी व्यास, संयोजक थे अमित सिंह, और मैं थी आपके साथ सूत्रधार प्रतिमा तिवारी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो बीकानेर, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 12 बजने को हैं, अब सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामी

0: आहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण।

हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे सुनना न भूलिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और इसी केंद्र से कार्यक्रम साहित्य भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से अब से कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत और फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 12:40 से। दोपहर 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई जयंती, आधुनिक युग में ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग में महिलाओं के अवसर, गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय, तुलसी और पुदीने के औषधीय गुण और साथ ही कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा एक वार्ता जिसका विषय रहेगा महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सोनिया करोला। इस कार्यक्रम को आज प्रस्तुत करेंगी मनोज कंवर खंगारोत और संध्या शर्मा ओझा।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और हमारी सायंकालीन सभा में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:05 से। आज इस कार्यक्रम में आज की बात में चर्चा रहेगी योग, इसकी तकनीकें, आसन और लाभ। लघु जानकारी के विषय रहेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाय जयंती, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, पर्यटन से शिक्षा और राजस्थान की झीलें। कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स रोजगार समाचार और क्विज टाइम भी कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:05 पर और ठीक 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। फरमाइशी पत्रों और ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़ आज इसका केंद्र रहेगा। 7:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत और बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। वाचक स्वर रहेगा श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा की, संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। लोक संगीत सुनना ना भूलिएगा 8:30 से और फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 से। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 12:10 होने को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

ये संगीत आपने सुना वारसी ब्रदर्स की आवाज में। ढोलक पर सादिया था मुकर्रम अहमद खान वारसी और तबला था मकसूद अहमद खान वारसी का। लीजिए सुगम संगीत में अगली पेशकश है उषा सेठ की आवाज में।

ललित कुमार व्यास के इस सुगम संगीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:40 हुए हैं। समय हो गया है आपके लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

ये गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। गीत के बोल थे ओपी मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए और संगीत था ओपी नैयर साहब का। फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बहारों के सपने से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

ये गीत आपने सुना फिल्म कटी पतंग से। इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था आरडी बर्मन का।

0: फिल्म संगीत में लीजिए अलग ही सुनिए फिल्म हम दोनों से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल हैं साहिर लुधियानवी साहब के और संगीत है जयदेव का।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं। अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से, क्षमा कीजिएगा, हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालन

0: पर युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन भी किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-124 रिद्धि नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। पर्यटकों को नाल घाटी वन क्षेत्र में बाघिन T-124 रिद्धि दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। पर्यटकों के अनुसार शावक 1 से 2 सप्ताह के हैं तथा इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। 2019 में जन्मी बाघिन रिद्धि प्रसिद्ध बाघिन मछली की वंशज है तथा एरोहेड की बेटी है जो तीसरी बार माँ बनी है। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में सघन निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। प्री मानसून गतिविधियों के चलते करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर पानी बीकानेर के डूंगरगढ़ और झालावाड़ के डग में बरसा। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने 8 जून से फिर से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। इस बीच अगले 24 घंटे तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मेगाराहा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गाने।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मनोज कंवर खंगारोत और संध्या शर्मा ओझा।

0: महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी मनोज खंगारू
1: और संध्या ओझा का प्यार भरा नमस्कार।
0: स्वागत है सखियों आपका अपने कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब कैलेंडर की कोई तारीख अपने भीतर कई अनोखे रहस्य, कई खूबसूरत रंग और जिंदगी को बदलने वाले संदेश समेटे होती है।
1: और सखियों, आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही खासियत लिए हुए है। सखियों, आज हम मना रहे हैं भारत रत्न गोपीनाथ बारदुलोई जी की जयंती। इनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। इनका जन्म आज ही के दिन असम में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
0: सखियों, बात करी जाए इनके महत्वपूर्ण योगदान की, तो इनका सबसे बड़ा योगदान असम और पूर्वोत्तर भारत के हितों की रक्षा करना। उन्होंने ऐसे प्रयासों का विरोध किया जिनसे असम की पहचान और उसके हितों को नुकसान पहुंच सकता था। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही आज असम भारत का अभिन्न अंग बना है।
1: साथ ही सखियों, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विकास को बढ़ावा दिया। साथ ही गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम मेडिकल कॉलेज तथा कई महत्वपूर्ण संस्थानों की भी स्थापना में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
0: बिल्कुल सखियों, इसके अलावा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले जी का जीवन हमें राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। तो सखियों, उनकी जयंती पर हमें उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए।
1: जी, और साथ ही सखियों, कार्यक्रम की जब इतनी प्यारी शुरुआत हुई है तो गीत संगीत तो होना ही चाहिए।
0: जरूर,
1: तो चलिए हमारे साथ गीत संगीत की दुनिया में।

0: Akashvani at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाश की बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाली, घर को स्वर्ग बनाने वाली और समाज को एक नई दिशा देने के साथ साथ आज अनेक भारतीय महिलाएं तकनीक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं। आज बस आवश्यकता है केवल सीखने की इच्छा, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास की।
1: क्या बात कही मनुज। और साथ ही मनुज, आज डिजिटल युग में ना हम महिलाओं के लिए इतने नए ऑप्शन आ चुके हैं जिनसे महिलाओं के लिए ना अब रोजगार, स्वरोजगार और नवाचार के ना अनेक अवसर खुल गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: पता है मनुज, पहले ना इंटरनेट और तकनीक के विस्तार ने ना महिलाओं को अब घर पर बैठे ही अपने कौशल का उपयोग करने का जो मंच है वो प्रदान कर दिया है। जैसे कि ना ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, अब महिलाएं घर बैठे ही अपने जो भी है कहते हैं कि कंप्यूटर फोन से ही अपना नया रोजगार शुरू कर सकती हैं।
0: बिल्कुल बहनों, ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में महिलाएं लोगो डिजाइन, पोस्टर निर्माण, सोशल मीडिया कंटेंट, वेब डिजाइन, एनिमेशन और ब्रांडिंग जैसे कार्यों में अपना करियर बना सकती हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे देश विदेश के ग्राहकों के साथ काम भी कर सकती हैं।
1: बिल्कुल मनोज, और साथ ही पता है हमारी सखियां जो हैं कोडिंग के क्षेत्र में ना अब वेब डेवलपर बन सकती हैं, वो ऐप डेवलपर भी बन सकती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती हैं आप सखियों, और साथ ही साथ डेटा एनालिस्ट, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अब आपकी जो मांग है, यानी कि हम महिलाओं की जो मांग है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है।
0: बिल्कुल, और इसके लिए संध्या सरकार और निजी संस्थाएं भी महिलाओं के लिए विशेष जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी चला रही हैं।
1: जैसे कि
0: जैसे बहनों, अगर आप इन क्षेत्रों में रुचि रखती हैं तो आप इनसे जरूर जुड़ें। अगर आपको इन क्षेत्रों में रुचि है तो आप मतलब जिस भी क्षेत्र को चुनना चाहती हैं उससे जुड़े। आजकल बहुत से कोर्सेज हैं जो निजी संस्थाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं
1: और सरकारी
0: योजनाओं में भी उनको, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है।
1: बिल्कुल, तो सखियों आपको अब अपनी वैश्विक स्तर पर जो अपना कार्य है उसे आप करने का आपको अवसर मिल चुका है, तो आप ये अवसर बिल्कुल ना गंवाएं। साथ ही नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने के साथ साथ कार्य व परिवार के बीच एक बेहतर संतुलन भी बनाने आसान हो गया है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अब जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती तो वो घर बैठकर ही तो काम कर सकती है ना मनोज।
0: मतलब अगर आप इन क्षेत्रों में रुचि रखती हैं तो आप इनसे जरूर जुड़े, क्योंकि देखो बहुत फायदे हैं इनके साथ। जैसे अभी आपने कहा कि किन्हीं कारणों से कोई हमारी बहनें हैं जो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि विकल्प है ये कि आप इनसे जुड़े और

0: में रहकर बहुत अच्छा काम इसके लिए कर सकती हैं। साथ ही इससे आपकी जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी, जो संध्या देखो आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
1: बिल्कुल, यानी कि ना इन एप्स पर आप काम कर सकती हैं, ये सब सीख कर आप आगे बढ़ सकती हैं, अपने करियर को एक नई दिशा दे सकती हैं। अगर आपने अब तक सखियों इस बारे में कुछ नहीं सोचा है तो सोच कर देखिएगा, क्योंकि जीवन में बदलाव तो हमेशा होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हो,
1: और कार्यक्रम में भी बदलाव की जरूरत है मनोज।
0: तो वो बदलाव हम गीत संगीत की दुनिया में अपनी सखियों को ले जाकर कर देते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जा...

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: संगीत आत्मा की भाषा है, जो बिना शब्दों के भी उन भावनाओं को भी बयां कर देता है जिन्हें कई बार जुबां बयां नहीं कर पाती। संगीत मानव जीवन की एक ऐसी मधुर कला है जो हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को आनंद से भर देती है। ये कहना बिल्कुल उचित है कि संगीत जीवन को खूबसूरत बनाता है।
3: तो चलिए सखियों, आपको ले चलते हैं इस संगीतमय वार्ता की तरफ। हमारी आज की वार्ताकार हैं डॉक्टर सोनिया करोला और वार्ता का विषय है महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व।

बहनों, एक महिला होने के नाते संगीत मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि इसने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा ही करता है। संगीत मेरे लिए प्राणवायु और ऑक्सीजन की तरह है, जो मेरे जीवन को और भी अच्छे से जीने में सहायता करता है। संगीत हमें स्वस्थ तथा शांत रहने में भी हमारी सहायता करता है। सत्य ही कहा है किसी ने, बिना संगीत के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संगीत के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। संगीत ध्यान की तरह है, यदि पूरी लगन और श्रद्धा के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को बढ़ाता है तथा उसे सुधारता है। हम संगीत से जुड़े सत्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह बहुत ही शक्तिशाली है, जो हमारी तरह ही भावना और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा तक को स्पर्श करता है, हमारे संसार से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। संगीत निश्चित ही एक प्रक्रिया है, और जिस प्रकार प्रकृति और प्राणी जगत में प्रकाश और गर्मी का प्रभाव होता है, उससे उनके शरीर भरते हैं, पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार संगीत से भी तापीय और प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और वह प्राणियों के विकास में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना अन्न और जल। महिलाएं ही नहीं, वरन पूरी मानव जाति के लिए संगीत ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है। संगीत आत्म शांति की वह कुंजी है, जो हमें मानसिक और शारीरिक स्वस्थ बनाने में हमारी सहायता करती है। संगीत के लय ही जो बीते समय पसंदीदा स्थानों, व्यक्तियों तथा छोटे उत्सव आदियों में सभी अच्छी यादों का, सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान करती है। संगीत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह हमारी दैनिक जीवन का भी हिस्सा बन चुका है। बहुत से लोग विभिन्न उत्सवों और कार्यक्रमों पर संगीत सुनना और गाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग हर समय संगीत सुनते हैं, दफ्तर में, घर में, रास्ते में, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, संगीत उनका एक माध्यम होता है जिससे उनका मनोरंजन हो सके। संगीत जीवन की सभी समस्याओं, मानसिक थकान से दूर करने में हमारी मदद करता है, यहाँ तक कि समाधान भी करता है। राग यमन।

कर्मचारियों के काम करने के समय पर उनके दिमाग को तरोताजा, शांतिपूर्ण, एकाग्र और सकारात्मक विचारों वाला बनाने के साथ ही कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए धीमी आवाज़ में गाने चलाने का दौर चलन में है। जितना हमने देखा है, सुना है कि खिलाड़ी भी अपने तनाव को दूर करने के लिए गाने सुनते हैं, गाने गुनगुनाते हैं ताकि तनाव से बचा जा सके। अनेक खिलाड़ियों ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, जब भी हमारा ध्यान खेल से भटकता था, तनाव महसूस होता था, तो हम गाने गुनगुनाते थे, गाने सुनते थे। एक खिलाड़ी के जीवन में भी संगीत का कितना महत्व है। एक महिला के जीवन में संगीत बहुत ही शक्तिशाली है और सभी भावात्मक समस्याओं के लिए सकारात्मक संदेश पहुंचाता है। संगीत की प्रकृति प्रोत्साहन को बढ़ावा देने की है, जो सभी नकारात्मक विचारों को हटाकर महिलाओं की एकाग्रता को शक्ति प्रदान करता है। संगीत वो है जो हमारे सबसे प्रिय के साथ की सभी अच्छी यादों को पुनः याद करने में मदद करता है। इसकी कोई सीमा, वादा और नियम निर्देशिका नहीं है। इसे तो केवल लगन और श्रद्धा के साथ सुनने की आवश्यकता है। जब भी हम संगीत सुनते हैं, यह हृदय और दिमाग में बहुत अच्छी भावना का संचार करता है। इससे हमारी आत्मा से जोड़ता है। यही जुड़ाव ईश्वर की सर्वशक्ति में भी होता है। संगीत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। संगीत के बारे में यह भी कहा जाता है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, यह तो सभी सीमाओं से परे है। इसी से प्रभावित होकर मेरा भी संगीत से जुड़ाव हुआ और संगीत में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। एक महिला होने के नाते आज मैं आपके सामने अपने जो ये विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, यह संगीत के ही कारण है, जिसके लिए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझ महिला को सुनने वाली हर महिला यह समझ रही होगी कि संगीत का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम जानते हैं कि आज की हर बीमारी, जैसे BP, शुगर, मोटापा, हृदय संबंधी बीमारियों का मुख्य कारण तनाव और तनावपूर्ण बने रहना है। संगीत है तो तनाव मुक्त जीवन जीने में हमें सहायता मिलती है। संगीत के बिना हम महिलाओं का जीवन तनावपूर्ण हो जाएगा। संगीत में काफ़ी शक्ति होती है। यह लोगों के मन में कई तरीके से जगह बनाता है, जहां ये काम को बनाता है और वहां ये काम को बिगाड़ भी सकता है। संगीत से सभी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि भी इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि संगीत के जरिए रोगों का उपचार भलीभांति किया जा सकता है। नेत्र रोग और हृदय रोग के उपचारों में इसका प्रयोग बहुत ही सफल रहा है। संगीत के स्वरों से पाचन संबंधी बीमारियों का उपचार भी किया जाता है। जैसे जैसे मनुष्य संगीत की स्वर लहरों में खोया चला जाता है, उसका ध्यान सब बातों से हट जाता है और वह सुकून महसूस करने लगता है। राग शिवरंजनी पर आधारित सा

राग शिवरंजनी सुनने से वायरस जनित रोगों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही यह शरीर व मस्तिष्क को राहत देने का भी कार्य करता है। हमारे शरीर के हार्मोन्स को संतुलित बनाए रखता है। मैं संगीत सुनना बहुत पसंद करती हूँ। सुबह संगीत सुनना मुझे बहुत पसंद है। संगीत हमारे हृदय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संगीत हमें अच्छी नींद प्राप्त करने में भी हमारी सहायता करता है। चूँकि शिक्षण काल में मेरा विषय संगीत गायन था, अतएव जब भी मैं थकान महसूस करती थी, तनाव महसूस करती थी, तो अपनी पसंद के गाने गुनगुना लेती थी और उन्हें सुनती भी थी। हॉस्टल लाइफ में संगीत का सबसे अधिक फ़ायदा मुझे इसलिए भी मिला था कि जब हम ग्रुप में बैठा करते थे, क्योंकि मैं संगीत गायन से थी और मेरा उस ग्रुप में एक विशेष आदर सम्मान किया जाता था। मेरी जूनियर्स भी मेरे से फरमाइश रखती थी कि दीदी मुझे यह वाला गाना सुनना है, मुझे वह वाला गाना सुनना है। उनका मेरे प्रति जो नज़रिया था वो केवल संगीत के कारण ही था। मुझे अभी तक की जीवन यात्रा में जो संगीत से मिला

वह बहुत ही अविस्मरणीय है। संगीत क्या है? मधुर ध्वनियों तथा स्वरों का विशिष्ट नियमों के अनुसार लय में होने वाला प्रस्फुटन। संगीत मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। संगीत का नाम लेते ही सर्वप्रथम शास्त्रीय संगीत ध्यान में आता है। शास्त्रीय संगीत को भारतीय संगीत भी कहा जाता है। यह भारतीयता का प्रतीक है। शास्त्रीय संगीत में स्वर समृद्ध है, इसमें इतना भंडार है, इतनी निधि है कि वह सागर के समान है। संगीत को और अन्य भागों में बांटा जाए तो लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत इसके पर्याय कहे जाएंगे। संगीत का उपयोग बतौर थेरेपी भी किया जाता है। रोगों के आधार पर तैयार संगीत अनेक रोगों के लिए लाभकारी साबित हो जाते हैं। एक डॉक्टर ने अपने शोध में कहा है कि भारतीय शास्त्रीय एक अपरंपरागत चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा समस्त आयु वर्ग एवं व्याधियों से ग्रसित व्यक्तियों का लाक्षणिक उपचार किया जाता है। यह भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं संवेदना के स्तर पर शरीर को प्रभावित करता है एवं मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। राग और उनसे उपचार में अगर बीपी है तो धीमी पिच वाला,

एवं निम्न बीपी हो तो तेज ध्वनि का संगीत सुनाया जाए तो वह रोगी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। दरबारी व सारंग राग हृदय रोगों के लिए लाभदायक है तथा शिवरंजनी स्मृति विलोप से संबंधित भी है। इसी प्रकार मालकोंस

श्वसन संबंधी रोगों से निवारण करने में हमारी सहायता करता है। वर्तमान की तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण कई व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में राग भैरवी और राग सोहनी को सुनना इस समस्या के निवारण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राग भैरवी व राग देश सिरदर्द संबंधी तकलीफों में अत्यंत उपयोगी हैं।

ओरी। राग पीलू रक्तहीनता के उपचार में काम आता है, तो राग जजवंती सामान्य शारीरिक कमजोरी में लाभ देता है। अतः मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी मेरी बहनें उदास हों, तनाव में हों, काम का बोझ ज़्यादा हो, तो संगीत से जुड़ें, संगीत को सुने। किसी भी बहन को ऐसी कोई तकलीफ हो तो वह उस तकलीफ में वह वही उसी प्रकार का राग सुने। मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए।

0: धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आपने बहुत ही प्यारी संगीतमयी वार्ता सुनी, जिसका विषय था महिलाओं के जीवन में संगीत का महत्व, और हमारी वार्ताकार थी डॉक्टर सोनिया करोला।
2: तो चलो संध्या, फिर इतनी अच्छी वार्ता के साथ अब हम हमारी सखियों को लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं उन्हें एक खूबसूरत सा गीत।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी

0: गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: मनोज पता है, पहले तो यानी कि कुछ दिन पहले तक तो मैं सिर्फ गर्मी से ही परेशान थी, लेकिन अब ये जो उमस बढ़ रही है ना बारिश की वजह से,
2: बिल्कुल
1: हाल मत पूछो कि कितना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं।
3: सही कह रही हो सखियो, जब जब गर्मियाँ आती है ना तो अपने साथ लू, और अभी जैसे संध्या ने कहा अब तो उमस वाली भी माहौल बना हुआ है, तो ये सब चीज़ें मिलकर डिहाइड्रेशन जैसी जो समस्याएँ हैं उनको लेकर आती हैं। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमें थकान

0: क्योंकि कई बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पानी तक पीना भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना सखियों कि आप ना पानी पीने का इंतजार मत कीजिए कि आपको प्यास लगेगी आप तब पियेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा आप अपने फोन में टाइमर लगा के रखिए। आजकल तो बहुत से ऐप्स आते हैं कि आपको हर 10 मिनट एक घंटे के बाद आपको वो बताएंगे कि आपको पानी पीना है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा रसोई में होती है, काम कर रही होती है, व्यस्त बहुत ज्यादा होती है
0: और वो आलस कर जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, आलस नहीं कर जाती, हमें याद ही नहीं रहता, हम लोग अपने काम में इतने ज्यादा डूबे रहते हैं, सबकी इतनी परवाह करनी होती है कि खुद को हाइड्रेट रखना हम भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो बहनों आप ये लापरवाही बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें, जैसे हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना। इसके अलावा एक चीज और संध्या होती है कि जब हम हमें प्यास लगती है या कुछ ठंडा पीने की हमारी इच्छा होती
1: है
0: तो हम सीधे जो पैकेट वाले जो पेय पदार्थ आते हैं, पैक जो आते हैं, वो हम लेने लगते हैं। ठीक है, वो एक समय के लिए हमारी प्यास भी बुझा देते हैं, पर जो ज़रूरी चीज़ें हमारे शरीर को उस समय चाहिए होती है, शायद कहीं ना कहीं वो उसमें पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस हमारी ये जो प्यास है इसको बुझाने के लिए हमें कोशिश करनी है कि इसके जो कह सकते हैं हम घर में बनाएं चीज़ों को।
1: हाँ, बाजार की चीज़ों की जगह अगर हम ना मनोज घर की चीज़ों को उपयोग करें,
0: और इसके लिए बहुत ऑप्शन है। आप घर के अंदर हमेशा जैसे थोड़ा थोड़ा नींबू पानी बना के रखें ताकि उसे पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। इसके अलावा दही छाछ, ऐसा तो ऑप्शन कहीं है ही नहीं, दही छाछ जो मतलब नॉर्मली हर घर में रसोई में रहता है, तो बस छाछ है उसका मट्ठा बना के पी लिया, लस्सी बना के हमने पी ली, जीरा जो है उसे थोड़ा सा पीस के रख लिया तो काला नमक और जीरा डाल के हमने
1: काला खट्टा बना के पी लिया, गोंद कतीरे के इतने सारे ना मतलब वीडियोस मैंने देखे हैं, इतने तरह का वो पेय बन सकता है कि पूछिए मत।
0: बिल्कुल, इसके अलावा जैसे सौंफ का पानी है, इसके अलावा जैसे अपने सौंफ का पानी, अभी कहा कि सौंफ को हमने रात भर भिजो के रख गया और सुबह जो धागे वाली मिश्री है उसके साथ मिला के उसे हम पीस के और ठंडे पानी के साथ, नारियल उसके तो गुण जितने गाए जाएं उतने कम है
1: वो, भले मगर वो महंगा भी बहुत होता है मगर मैं तो ना गोंद कतीरे के तो ना इतना ज्यादा मैंने उसके वीडियोस देखे हैं कि मन करता है सारे के सारे मैं ही बना दूं, और परिवार में बच्चों में मतलब कोई भी गेस्ट आता है ना मैं यही सब देती हूँ उन्हें ना, तो उन्हें इतना पसंद आता है कि पूछिए मत। और साथ ही ना अगर हम खाने में खीरा, तरबूज, खरबूज,
0: अभी तो बहुत
1: भरमार है फ्रूट्स की, ये सब हम सलाद के तौर पर अगर अपने खाने में शामिल करें तो वैसे भी हम हाइड्रेट रहेंगे।
0: बिल्कुल, इसके अलावा एक चीज़ और है कि चाय कॉफ़ी जो है अभी जैसे गर्मी को देखते हुए, हालांकि हम महिलाओं की अगर बात करें तो हमें खूब इच्छा होती है कि चलो थकान हो गई थोड़ी सी चाय ले ली जाए।
1: बिल्कुल, पर एक चाय की इच्छा तो कभी नहीं जाती है
0: पर हाँ एक चाय चलती है, पर ये नहीं कि हम थोड़ी थोड़ी देर में चाय कॉफ़ी लिए जा रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान
1: देती है।
0: तो बहनों आप ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें, अपने ध्यान रखें, परिवार के साथ साथ खुद को भी इन चीज़ों का उपहार दें।
1: बिल्कुल, साथ ही सखियों अगर मैं बात करूं कि ना मैं चाहती थी कई बार ऐसा कि ना मेरे ना किचन गार्डन हो बहुत खूबसूरत सा, और ना पता है मनोज मैंने ना बनाया भी है, उसमें मेरे ना पुदीना मैंने अभी हाल फिलहाल में उगाया है।
0: बिल्कुल,
1: जो मेरी बच्ची पता है जब भी किचन में आती है ना तो वो एक चीज बोलती है, भाई मम्मी आपने ना गन्ने का जूस बनाया है क्या, क्योंकि उसे ये पता है कि उसमें ये खुशबू होती है
0: पुदीने की, महक बहुत पसंद है उसे,
1: बहुत पसंद है और घर महकता भी बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन पता है आपको मनोज के ना तुलसी है और ये जो पुदीना है ये सिर्फ दिखाने के लिए या पूजा करने के
0: बिल्कुल,
1: लिए ही नहीं,
0: धार्मिक महत्व के साथ साथ इनके जो हमारे शरीर है हमारा जो स्वास्थ्य है उनको लेकर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये हमारी बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता है उसको विकसित करते हैं ताकि हर छोटी मोटी जुकाम हमें जकड़ ना पाए।
1: बिल्कुल, मेरी जो दीदी है उनको अक्सर ये सर्दी जुकाम की चाहे गर्मी हो सर्दी हो ये परेशानियां रहती थी, लेकिन जब से उन्होंने ना तुलसी जी का काढ़ा पीना शुरू किया है तब से देखिए उनका सर्दी जुकाम गायब हो गया है।
0: तो बहनों आप भी अपने किचन गार्डन में इस तुलसी पुदीने को जगह दीजिए और इनके फायदे उठाइए। और अभी के लिए हम बहनों को लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में, क्योंकि वो भी तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,

0: सखियों गीतों की दुनिया से वापस आते हैं क्योंकि कार्यक्रम में अब जो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का है, लेकिन हमेशा की तरह हम कल फिर आपसे मिलेंगे।
1: बिल्कुल, और आज के लिए दीजिए अपनी सखी मनोज खंगारुत
0: और संध्या ओझा को
1: इजाजत।
0: इजाजत, नमस्कार, नमस्कार।

0: ताकि प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले

0: में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु

0: पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 2:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में। बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने। फिल्म का नाम है साहब, बीवी और गुलाम।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म आप तो ऐसे न थे से। इस गीत का के बोल लिखे थे निदा फाजली ने, संगीत था उषा खन्ना का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है संगम। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

फिल्म संगीत में लीजिए अगला गीत, अब सुनिएगा फिल्म इज्जत से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था शतरंज। बोल थे SH बिहारी के और संगीत था शंकर जयकिशन का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, ठीक 3 बजे हैं, हमारी आज की पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 4:58 से हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बजने को हैं, हमारे संध्याकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत

0: सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सेवाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 5:05 हुए हैं। अब युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी।

0: मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कबीर दास जी की ये पंक्तियाँ सदियों पहले कही गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि शरीर की शक्ति से पहले मन की शक्ति जरूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। शाम के बज चुके हैं 5, चाय का कप हो चुका है तैयार और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट सलोनी पारिक।
1: और मैं हूँ आपके साथी प्रियंका। आप सभी प्यारे दोस्तों को हमारी इस खूबसूरत शाम का प्यार भरा नमस्कार। सलोनी, कबीरदास जी की इन लाइनों ने शाम की इस थकान में जैसे एक नई चेतना सी जगा दी है। वैसे दोस्तों, इस बारिश में चाय के साथ आज का क्या प्लान है?
0: प्लान बहुत सिंपल है प्रियंका, शाम का रीबूट। दोस्तों, इस वक्त आप में से कई लोग कॉलेज से घर लौट कर आए होंगे, या कुछ ऑफिस की डेस्क पर स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे, तो कुछ हमारी तरह स्टूडियो या अपने कमरे में होंगे। दिन भर स्क्रीन को घूरने के बाद जो गर्दन अकड़ जाती है और दिमाग का दही हो जाता है ना, उसी का आज हम क्विक फिक्स ढूंढेंगे।
1: अरे, ये तो तुमने हर युवा का हाल बता दिया। सच में शाम तक आते आते बॉडी पूरी जैसे लॉक हो जाती है। अब ऐसे में कोई अगर हमसे कहे कि चलो योग करो, ये तो बहुत ज़रूरी है, तो मन करता है कि उसे बोलें कि भाई पहले थोड़ा एनर्जी तो दे दो। हम सब जानते हैं कि योग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस थकी हुई शाम में इसे कैसे फिट करें?
0: बहुत सिंपल तरीका है प्रियंका, हमें कोई एक घंटा या भारी भरकम इसको सेशन डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑफिस चेयर पर बैठे बैठे या बिस्तर पर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट में आप खुद को रिचार्ज कर सकते हैं? इसे डेस्क योगा या माइक्रो प्रैक्टिस कहते हैं। बस अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, कंधों को पीछे रोल करें और एक गहरी सांस लें। यहीं से योग की सही तकनीक शुरू हो जाती है।
1: तकनीक? सलोनी, जरा बताओ कि इस थकी हुई शाम में योग की सही तकनीक क्या होनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत तरीके से कुछ स्ट्रेच कर लें और बाद में दर्द बढ़ जाए।
0: बिल्कुल सही पॉइंट है प्रियंका। योग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है ब्रीथिंग टेक्निक। शाम के वक्त जब आप दिमाग थॉट ओवरलोड से

0: फटने लगता है तब भ्रामरी प्राणायाम यानी वो मधुमक्खी जैसी गूंज दिमाग की सारी नसों को तुरंत रिलैक्स कर देती है। जो दोस्त रात को ठीक से सो नहीं पाते या जिन्हें स्क्रीन टाइम की वजह से सिर दर्द रहता है उनके लिए ये शाम को 3 मिनट का अभ्यास किसी जादू से कम नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर के दोनों नर्व सिस्टम बैलेंस हो जाते हैं जिससे दिन भर का मेंटल क्लस्टर साफ हो जाता है।
1: जी हाँ, और प्राणायाम के बाद बात आती है आसनों की। दोस्तों हर आसन का अपना एक विज्ञान है। जैसे अगर आप अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करते हैं तो ये अकेला ऐसा अभ्यास है जो आपके सिर से लेके पैर के अंगूठे तक हर हिस्से को स्ट्रेच और टोन कर देता है। इसमें 12 आसन शामिल होते हैं जैसा कि आप जानते ही होंगे जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं।
0: और प्रियंका, आजकल के युवाओं में जो बैक पेन यानी पीठ दर्द की आम समस्या है उसके लिए भुजंगासन और ताड़ासन बेहद असरदार है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, भुजंगासन और ताड़ासन ये तो बेहद असरदार हैं ही। और दोस्तों ताड़ासन करने से न सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी होती है बल्कि बढ़ते बच्चों की हाइट के लिए भी इसे बेस्ट माना जाता है। और वही भुजंगासन हमारे फेफड़ों और रीढ़ को मजबूत भी बनाता है।
0: ये एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों कि थकी हारी शाम में जब शब्द भी लड़खड़ाने लगे तब हमारे योगा जैसे में मेडिटेट करने में इंसान को बड़ी शांति और सुकून का एहसास होता है जो आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं महसूस करने वाली हूँ।
1: बिल्कुल सलोनी, लेकिन योग का फायदा सिर्फ शारीरिक नहीं है, इससे मानसिक लाभ तो अद्भुत है। आजकल के इस फास्ट लाइफ में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन हर दूसरे दोस्त की कहानी बन चुका है और योग हमारे भीतर हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जिससे मूड एकदम फ्रेश हो जाता है।
0: सच कहा प्रियंका, और इसका सबसे बड़ा लाभ है एकाग्रता। जो दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर वे रोज सिर्फ 10 मिनट का ध्यान या आसन करते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी याद रखने की क्षमता बहुत बेहतर हो सकती है। योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, न बीते कल की चिंता न आने वाले कल का डर।
1: यानी कि अगर कुल मिलाकर कहें तो योग कोई एक दिन का इवेंट नहीं बल्कि रोज खुद से मिलने का एक जरिया है।
0: लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, योग में जल्दबाजी नहीं होती। अगर यदि कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आपको सबसे मुश्किल वाला योगासन करना है, योग का उद्देश्य खुद को समझना है और धीरे धीरे बेहतर बनाना है।
1: और मुझे योग की यही बात सबसे अच्छी लगती है कि ये हमें अपने शरीर को सुनना सिखाता है। आज की दुनिया में हम सबकी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर होती है लेकिन योग हमें खुद की ओर देखने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल, तो चलिए इस रिलैक्सिंग और फ्रेश वाइब के साथ शाम के इस ढलते सूरज और इस अच्छी बारिश में आपके मन को थोड़ा और हल्का करते हैं।
1: और योग से बॉडी रिलैक्स हुई, माइंड क्लियर हो गया, तो चलिए इस सॉन्ग के साथ आपकी एनर्जी को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं।

0: दोस्तों अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से जुड़े दो प्रश्न। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है,
1: भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
0: दोस्तों आपके लिए दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये थे दोस्तों आपके दोनों प्रश्न, अब आप इनके जवाब सोचिएगा और कार्यक्रम के अंत में हमारे जवाबों से मिलाइएगा। अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: मन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, साल 1947 का वह दौर, देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, नए भारत की नींव रखी जा रही थी और भविष्य को लेकर बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे थे। लेकिन उसी समय भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर असम के भविष्य को लेकर भी कई तरह की चिंताएं और चुनौतियां सामने आई थी। ऐसे समय में एक दूरदर्शी नेता पूरे साहस और दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उन्होंने न केवल असम के हितों की आवाज़ बुलंद की, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी सर्वोपरि माना। उनके नेतृत्व में उत्तर पूर्वी भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: बिल्कुल सलोनी। दोस्तों, आज 6 जून है और आज हम बात कर रहे हैं असम के महान स्वतंत्रता सेनानी, लोकप्रिय जननेता और भारत रत्न गोपीनाथ बारदोलोई जी की। उनका जीवन हमें बताता है कि सच्चा नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि दूरदृष्टि, साहस और जनसेवा से पहचाना जाता है।
4: बिल्कुल प्रियंका। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक ऐसी व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी जिससे असम को बंगाल के साथ समूहबद्ध किया जाना था। उस समय गोपीनाथ बारदोलोई जी ने असम की चिंताओं और हितों को मजबूती से राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए कि असम की पहचान, उनके लोगों के अधिकार और उनके भविष्य को उचित महत्व मिले।
5: और दोस्तों, यही कारण है कि असम के लोग उन्हें केवल एक राजनेता के रूप में नहीं देखते थे, उनके प्रति सम्मान और स्नेह इतना गहरा था कि उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई। ये उपाधि किसी सरकारी सम्मान से नहीं बल्कि जनता के प्रेम और विश्वास से मिलती है।
4: दोस्तों, गोपीनाथ जी केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार के विषय में भी बहुत काम किए और स्वतंत्र भारत में वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अनेक दूरगामी कदम उठाए।
5: सलोनी, साथ ही उन्होंने आदिवासी समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भी लगातार कार्य किया।
4: बिल्कुल।
5: दोस्तों, किसी भी महान व्यक्ति की पहचान केवल उनके कार्यकाल से नहीं होती बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत से होती है, और गोपीनाथ बारदोलोई जी विरासत आज भी असम और पूरे उत्तर पूर्व भारत के विकास में दिखाई देती है। उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया।
4: आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलोई जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, त्याग और जनहित के प्रति समर्पण से भी की जाती है।
5: और जब भी देशभक्ति, समर्पण और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे की बात होती है तो हमारे वीर सैनिकों का स्मरण अपने आप ही हो जाता है, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।
4: तो आइए दोस्तों, देश के उन असली नायकों को नमन करते हुए पद्मश्री कैलाश खेर की बुलंद आवाज में सुनिए हर हिंदुस्तानी की आवाज। पेश है भारतीय सेना।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है।

0: हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या

0: मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज हम भारत को जिस मुकाम पर देखते हैं वो अचानक नहीं आया। उसके पीछे गोपीनाथ बोरदोलोई जी जैसे ही कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आराम के लिए नहीं, देश के भविष्य के लिए लगा दी थी।
4: और मज़ेदार बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर के नाम हम किताबों के अलावा कहीं सुनाई नहीं देते हैं।
3: जैसे कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, एक ऐसे इंसान जिन्होंने ये सोचा कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो उसे अपनी ताकत खुद बनानी होगी।
4: और वही ताकत थी न्यूक्लियर पावर, जिसकी वजह से आज भारत को कोई आसानी से नजर उठाकर नहीं देख सकता।
3: और यहीं से दोस्तों कहानी शुरू होती है एक जगह की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
4: दोस्तों, सन 1954 जब भारत नया नया आजाद हुआ था और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था, उन्होंने इस दौर में ये समझ लिया था कि अगर हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना तो एनर्जी, साइंस और रिसर्च हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए।
3: मुंबई में, लेकिन शहर के शोर और चकाचौंध से थोड़ा दूर ट्रॉम्बे इलाके में ये स्थित है, जहाँ सिक्योरिटी तो हाई है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई लेवल है थिंकिंग का।
4: और ये सिर्फ एक रिसर्च लैब नहीं है दोस्तों, ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैकबोन है।
3: यहीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर रिसर्च होती है और यहीं पर फ्यूल साइकिल, रेडिएशन सेफ्टी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है।
4: प्रियंका, हम अक्सर न्यूक्लियर शब्द सुनकर सोचते हैं कि हथियारों की बातें हो रही होगी, जबकि BARC का बहुत बड़ा फोकस पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पर है।
3: जैसे कि बिजली, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देश को एनर्जी देते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी सिस्टम्स यहीं डिजाइन और टेस्ट होते हैं।
4: दोस्तों, इसके अलावा सिर्फ एनर्जी ही नहीं, मेडिकल फील्ड में भी BARC का काम बहुत बड़ा है। कैंसर ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन थेरेपी होती है, उसके लिए जरूरी रेडियो आइसोटोप्स BARC में ही बनाए जाते हैं।
3: और दोस्तों, इसके साथ ही एग्रीकल्चर में भी यही कहानी है। बीजों की क्वालिटी इंप्रूव करना, फूड प्रिजर्वेशन, सेल्फ लाइफ बढ़ाना, इन सब में न्यूक्लियर साइंस यूज होती है।
4: और स्पेस मिशंस की क्या बात है यहाँ पे?
3: वहाँ भी दोस्तों BARC का कंट्रीब्यूशन है, मटेरियल्स, सेंसर्स और रेडिएशन प्रोटेक्शन में।
4: प्रियंका, इतनी सारी जगहों पर प्रेजेंस और फिर भी इसकी कोई हाइप नहीं?
3: शायद क्योंकि यहाँ काम बोलता है, लोग नहीं।
4: मतलब जिस जगह पर देश की सिक्योरिटी, एनर्जी और हेल्थ तीनों का फ्यूचर जुड़ा है, वहाँ साइलेंस ही डिसिप्लिन है।
3: यही तो इसकी खूबसूरती कह लो या असली ताकत, बिना शोर के मजबूत रहना, क्योंकि यहाँ काम पहचान नहीं मांगता, बस देश से रिश्ता रखता है।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: होता है
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: अरे प्रियंका, मैं एक बात बताना ही भूल गई।
1: क्या?
0: हमारे कॉलेज में ना 2 महीने बाद एक एजुकेशनल ट्रिप प्लान हो रही है।
1: अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं?
0: मुंबई। और टीचर्स बोल रहे हैं कि वहाँ जो अभी हमने बात करी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, हमें वहाँ भी लेके जाएंगे।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सारी चीज़ क्लासरूम से समझ नहीं आती दोस्तों, कुछ चीज़ आपको प्रैक्टिकल उन जगहों पर जाकर, उन्हें देखकर, वहाँ खड़े होकर, थोड़ा फील करके समझ आती है।
0: हाँ, और यह भी मैं मानती हूँ कि किताब में पढ़ लेना एक बात है, लेकिन जब उसी माहौल में हम पहुँचते हैं तो चीज़ें अपने आप कनेक्ट होने लगती है। इसीलिए मुझे एजुकेशनल ट्रिप्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ये सिर्फ घूमना नहीं है बल्कि घूमने के साथ सीखने का एक जरिया भी है।
1: या ये कह सकते हैं कि ये ट्रैवल प्लस लर्निंग दोनों का कॉम्बो होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप फिट बैठता है, यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका है।
1: वो भी स्पेशली हमारे राजस्थान के अंदर, देख लो।
0: बिल्कुल, किले के सामने खड़े होकर उसका इतिहास महसूस करना किताब में पढ़ने से बहुत अलग एक्सपीरियंस है।
1: और हमारे बीकानेर जैसे शहर तो खुद में पूरा लेसन है।
0: वो तो है ही। बीकानेर में जूनागढ़ किला देखो, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, डिफेंस स्ट्रेटेजी, सब कुछ लाइव समझ में आ जाता है।
1: और देशनोक का करणी माता मंदिर भी, कल्चर, बिलीफ और लोगों का फेथ, ये सब चैप्टर में कैसे समझाओगे आप?
0: बिल्कुल सही कहा। और पास ही में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स, जहाँ जाकर पता चलता है कि रेगिस्तान में भी साइंस कैसे काम करती है।
1: और तभी समझ आता है कि रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है। पानी, खाना, मौसम, सब कुछ बैलेंस में जीना सिखाता है।
0: और कल्चर, वो तो बिना बोले समझ आ जाता है, सीख सकते हैं। हाँ, हमारे राजस्थान में।
1: वैसे ये सिर्फ बीकानेर ही नहीं, इंडिया में जहाँ भी जाओ लर्निंग साथ में ही चलती है।
0: जैसे जयपुर में हेरिटेज, उदयपुर में आर्ट एंड एस्थेटिक्स,
1: वाराणसी में लाइफ फिलोसफी और हम्पी में हिस्ट्री, बिना बोले बात करती हैं।
0: प्रियंका, बारखो या बीकानेर, दोनों अलग अलग तरह से यही बताते हैं कि
1: लर्निंग 4 दीवारों तक सीमित नहीं होती
0: और एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती,
1: सोच विकसित करने के लिए होती है।
0: और जब ट्रैवल सोच बदल दे तो वही असली पर्यटन होता है, और वही पर्यटन से शिक्षा का मतलब है।
1: यानी कि सीख आप क्लासरूम के बाहर भी सकते हैं, तो अपने सिलेबस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और साइकिल से छलांग लगाकर आगे बढ़ते हैं।

0: दोस्तों अब वक्त है आज के क्विज टाइम में पूछे गए सवालों के सही उत्तर जानने का। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था,
1: भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
0: और इसका सही उत्तर है वूलर लेक।
1: उम्मीद है कि आपने सही सोचा होगा। आपका दूसरा प्रश्न था दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इस सवाल का सही जवाब है
0: लोखंडे प्रशांत सीताराम।
1: दोस्तों इसी के साथ अब वक्त है रोजगार सूचना का। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL परीक्षा 2026 के लिए एक बम्पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
0: जी हाँ दोस्तों, पद की संख्या जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। इस बार ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 12,256 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस बेहतरीन अवसर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो देर मत कीजिए क्योंकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 22 जून 2026 तय की गई है।
1: और अगर योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो अलग अलग पदों के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 से 32 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमानुसार आयु में छूट का भी प्रावधान है।
0: तो दोस्तों इस बम्पर वैकेंसी का पूरा फायदा उठाइए। विस्तृत जानकारी, पात्रता मापदंड और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तुरंत SSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जाएं। मैं वेबसाइट फिर से दोहरा देती हूँ, www.ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए।

0: तुमने नोटिस किया है प्रियंका,
1: क्या
0: बाकी राज्यों के लोग जब भी राजस्थान की बात करते हैं तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली सूखा, रेगिस्तान, पानी की कमी, ये चीज सामने आती है।
1: ऐसा इसलिए है सलोनी क्योंकि उन्होंने अब तक हमारे राजस्थान को ठीक से जाना ही नहीं, उन्होंने यहाँ की झीलें देखी नहीं।
0: एग्जैक्टली मुझे याद है जब मैं पहली बार उदयपुर गई थी, बस ट्रेन से उतरी और सामने पानी चमक रहा था। मेरे दिमाग में लिटरली यही आया कि क्या यही वही राजस्थान है।
1: और लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ रेत है। उदयपुर की पिचोला लेक देखो, वो झील नहीं लगती, पूरा मूड लगती है।
0: सही कहा, मेरी एक कजन रहती है वहाँ, वो बता रही थी कि शाम को लोग बस झील के किनारे बैठ जाते हैं, ना फोन ना शोर, बस पानी, हवा और सुकून।
1: ये तो है ही, और वही पानी कभी राजाओं की स्ट्रेटजी का भी हिस्सा था। फतेह सागर लेक भी देखो, कभी शहर की लाइफलाइन थी और आज जॉगिंग ट्रैक है, बोटिंग है।
0: मतलब राजस्थान ने पानी को डेकोरेशन नहीं बनाया, उसको जरूरत समझा है।
1: मेरे दादाजी बताते थे पहले पानी वेस्ट करना ऑलमोस्ट क्राइम जैसा माना जाता था, आज हम नल खुला छोड़ देते हैं, तब लोग हर बूंद का हिसाब रखते थे उस समय।
0: और ये सब बिना किसी जल संरक्षण प्रोजेक्ट के नॉलेज के साथ पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे चलता रहा दोस्तों।
1: वैसे क्या तुम कभी जैसलमेर गई हो?
0: जैसलमेर तो गई हूँ मैं, और वहाँ घरसीसर लेक भी देखी है मैंने। रेगिस्तान के बीच में पानी की वो लेक किसी चमत्कार जैसी लगती है।
1: देखो जहाँ पानी मिलना सबसे मुश्किल है वहीं उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा।
0: और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पुष्कर लेक अगर हम देखें तो वहाँ पानी, आस्था और कल्चर तीनों एक साथ मिलते हैं।
1: और सांभर लेक भी एक झील जो नमक देती है। नेचर भी कहता है कि हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है।
0: दोस्तों राजस्थान की झीलें हमें ये नहीं सिखाती कि पानी कैसे जमा करें,
1: बल्कि ये सिखाती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी स्मार्ट लाइफ कैसे जी जा सकती है।
0: आज हम सस्टेनेबिलिटी की वर्कशॉप्स करवाते हैं और वहाँ लाइफस्टाइल कैसे जीनी है ये सीखते हैं।
1: कभी टेक्नोलॉजी सिखाती है, कभी आर्किटेक्चर,
0: और कभी बस एक झील पूरी फिलॉसफी सिखा देती है।
1: तो अगली बार जब कोई बोले कि राजस्थान में देखने को क्या है
0: तो कहना वहाँ पानी बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। प्रियंका आज बातों बातों में और सुरों के इस सफर में वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है कि अब हमारे दोस्तों से विदा लेने का समय आ गया है।
1: सच में सलोनी, इस भागदौड़ और शोर भरी दुनिया में बस ठहर कर थोड़ी बातें करना, कुछ नया सीखना, और ये सब कितना सुकून देता है।

0: वहाँ पानी बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। प्रियंका, आज बातों बातों में और शुरू के सफर में वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है कि अब हमारे दोस्तों से विदा लेने का समय आ गया है।
1: सच में सलोनी, इस भागदौड़ और शोर भरी दुनिया में बस ठहर कर थोड़ी बातें करना, कुछ नया सीखना, और ये सब कितना सुकून देता है।
0: तो बस हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों की मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं।
1: इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए युवाणी। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम दोनों का आप सभी को नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, प्रस्तुति थी सोलोनी पारिक और प्रियंका सोनी की।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 5:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनिए शीर्षक गीत। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। सात बजे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गूंजे गांव ग्वाड, फरमाइशी पत्रों और ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव ग्वाड 7 बजे। 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत।

8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण, बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। प्रस्तुति होगी श्री महेश, वाचक स्वर होंगे श्री महेश उपाध्याय की, प्रस्तुति होगी श्री रेवंत राम लेगा की, और इस कार्यक्रम का संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो सुनिएगा 8 बजे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण, और 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत।

9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 9:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम साहित्य भारती। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में

0: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का टोला मारू चैनल है। 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीर्षक गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम का शीर्षक गीत। गाया है कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी आपने सुना क्या दिल ने कहा, फिल्म का टाइटल ट्रैक। आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत शीर्षक गीत। अगला गीत सुनेंगे फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से। आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने

0: बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। 6:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार सुगमता के लिए भी कई सुधारों पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा धन्वंतरी ओपीडी यूनिट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों के रोगियों से भी बातचीत कर इंतजामों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और अधिकारियों को मरीजों के लिए जांच सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है, यहां प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां भी सुधार की गुंजाइश है इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
1: यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, सभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
0: मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की

0: सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में सुशासन से देश की तस्वीर बदली है।
1: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज अपने पहले दौरे पर जयपुर पहुंचे। संगठन महामंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों और गतिविधियों की जानकारी ली। वे कल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं की विशेष बैठक लेंगे। उनका ये प्रवास संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आज समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आज जयपुर में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा तथा नर्सिंग की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आज प्रदेश के 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों और नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों के साफ सफाई के कामों को अधिक प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम के नवाचार की सराहना करते हुए साफ सफाई में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए युवा ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।

0: बहरोड में आज अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप से युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का भी अवसर मिलता है।
1: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। बाड़मेर में पुलिस की ओर से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं पाली में साइकिल रैली के जरिए लोगों को नियमित व्यायाम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेजड़ी वाटिकाएं विकसित की गई हैं। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के प्रयास के तहत ये पहल की गई है। वन विभाग ने एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी का चयन कर करीब 1.5 करोड़ खेजड़ी पौध तैयार की है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इनका वितरण भी शुरू किया जाएगा।
2: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे कई शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को बदले मौसम से काफी राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बरसात के आसार हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां आज और कल कई हिस्सों में जारी रह सकती हैं। वहीं 8 जून से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी बताई गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में स्थित जिला नागौर 7 जिलों से घिरा हुआ है। महाभारत काल में इसे जंगला देश के नाम से जाना जाता था। नागौर खींवसर और कुचामन के किले के साथ ही मकराने के मार्बल के लिए

0: ये जिला अपनी अलग पहचान रखता है। रामदेव पशु मेले और वीर तेजाजी मेले में भाग लेने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। नागौर जिले की चिट्ठी में आज कई मंत्रियों के दौरे और सामाजिक तथा विकास से जुड़े समाचार शामिल हैं। सबसे पहले बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री बीते दिनों नागौर आए और उन्होंने मेड़ता सिटी में आयोजित राव दूधा प्रतिमा का अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने राव दूधा की वीरता, न्याय प्रियता और नारी सम्मान के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रक्षा मंत्री ने मेड़ता के मीरा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रूपए की राशि देने की घोषणा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां रखी गई। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। जगह जगह पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले वन विभाग की ओर से नागौर में लवकुश वाटिका से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत नागौर के जड़ा तालाब के पूजन के साथ हुई। इस दौरान पौधे लगाए गए और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान 12 दिन तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई और जल संरचनाओं की मरम्मत के कार्य हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अभियान के तहत नागौर के प्रताप सागर तालाब की पाल पर जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण का काम कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्वगणना का काम किया गया। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को कार्मिकों के साथ स्वगणना सुनिश्चित करने और हर कर्मचारी को कम से कम 10 अन्य परिवारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया ग्राम रथ अभियान ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का प्रभावी माध्यम बना। अभियान के दौरान अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। जिले में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगवाए गए। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। नागौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रबारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा एसएमएस अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवानों ने विकसित भारत रो

0: सपनों सांचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासों पहली री हलचल रे कारण घणखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवण रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे वह समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद सागे मीटिंग कीनी। वह दुनिया में चाल रही उथल पुथल बीच भारत री माली बरकत ने बधावो देवन सारू करिया जावन वाला न्यारा न्यारा जतन रे बारा माय चर्चा कीनी। मीटिंग में जनता री जिंदगी ने और बेहतर बनावन और कारोबार करण माय आसानी लावन सारू विचार करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल री धनवंतरी ओपीडी यूनिट रो दौरो कीनो। वह मरीजों अस्पताल री व्यवस्थावां रे बारा माय जानकारी लीनी। श्री शर्मा मरीजां सारू भांत भांत री जांचां रा सुबिता जरूरी दवाइयां री उपलब्धता और गर्मी माय छाया पानी री व्यवस्था तय करन रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री हड्डी रोग कार्डियोलॉजी वार्ड और न्यूरोलॉजी वार्ड री व्यवस्थावां रे बारा माय मरीजों जानकारी लीनी। ई मौके वे कहो के अस्पताल में चोखो काम फियो है पन फेरी सुधार री गुंजाइश है।
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो, आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि लाडला 12 साल माए देश माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन रो बूतो 2.8 गीगावाट बधर 155 गीगावाट फेंक्यो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि देश माए 40 लाख बत्ता घरा माए सूरज री रोशनी बनी बिजली काम ली जा रही है। शेखावत कहो कि खेतीबाड़ी माए सूरज री रोशनी बनी बिजली दूनी तादाद माए काम लेवणो आबो हवा ने बचावण सागे बरकत री मिसाल है। केंद्रीय मंत्री कहो कि देश रा किसान अब जिनसा री उपज लेवण सागे बिजली पैदा कर रहा है। श्री शेखावत आज जोधपुर पधारिया। वठ खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका वह कहो कि लाडला 12 साल माए सुशासन देश री तस्वीर बदली है।
2: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा नुआ बनाईजा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज पहला दौरा सारू जयपुर पधारिया। वे भाजपारा प्रदेश दफ्तर में पार्टी रा ओहदादारा सागे मीटिंग कीनी। वारो काल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्तावां सागे खास मीटिंग करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश रा न्यारा न्यारा महकमा माए भर्तियां रा काम रो आज जायजो लीनो। वे गृह प्रशासनिक सुधार, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा और नर्सिंग री भर्तियां रो विभागवार जायजो लीनो। मुख्य सचिव महकमा ने भर्ती रा काम जुड़ी जरूरी कार्रवाई बेगी पूरी करन रा हुकम दीना। श्री श्रीनिवास भर्ती रा काम माथे लगातार निगरानी राखण बाबत कहो। मुख्य सचिव स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 रातेत जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा माए स्वच्छता सर्वेक्षण री तैयारियां और नवाचारां रा बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग माए 8 होड़ा साफ सफाई रो प्रबंधन, कचरो भिड़ोकरण, गंदी चीजां रा प्रसंस्करण और जन जागरूकता सारू कराया जा रहा कामां री जानकारी दी री जी। मुख्य सचिव साफ सफाई रा काम माए ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम रा नवाचार री सराहना करता थका साफ सफाई माए तकनीक रो बत्तों बत्तो इस्तेमाल करण बाबत कहो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक

सत्यापन और परीक्षा री कॉपी उजू जचावण सारू अर्जी देवण री आखिरी तारीख आज 6 जून नू बधार 7 जून करती नी है। ई पाछे विद्यार्थी अब काल आधी रात ताई अर्जी दाखिल कर सके है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नौजवानों ने विकसित भारत रो सपनों सांचो करण री प्रेरणा देवन वाली ताकत बताया है। वह नई दिल्ली में राखी जिया मेरा भारत

0: कार्यर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नौजवानों ने विकसित भारत रो सपनो सांचो करण री प्रेरणा देवन वाली ताकत बताया है। वह नई दिल्ली माए राखी जिया मेरा भारत युवा सम्मेलन माए बोल रहा है। डॉक्टर मांडविया कहो कि भारत दुनिया रा सब नौजवान देशों माए शामिल है, जिथे करीब 65% आबादी 35 साल कम उम्र रा लोगों री है। वह कहो कि सरकार विकसित भारत बनावण और नौजवानों री ताकत और बूता ने सही दिशा देवण सारू लगातार कोशिश कर रही है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: अलवर सांसद खेल उत्सव रा तहत बहरोड़ माए आज समर कैंप शुरू हो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर रा सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सागर इनरी सरवात कीनी। ए मौके दिया कुमारी कहो कि खेलों अनुशासन टीम भावना और अगुवाई करण रा बूता रो विकास वह है। उप मुख्यमंत्री कहो कि समर कैंप मोटियारा री प्रतिभा री पछाण रो मौको ही मिले है।
2: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रहते काली स्वास्थ्य रो ध्यान रखण रे बारे माए जाग जगावण सारू खास कार्यक्रम रख्या जावेला। बाड़मेर माए पुलिस री ओर साइकिल रैली निकाली जावेला। पाली माए साइकिल रैली रे जरिए रोजिना कसरत करण जुड़ी जाग जगाई जावेला। राज्य वृक्ष अर थार कल्प वृक्ष कहो जावण वालों खेजड़ी रा रूखड़ा ने बचावण री कोशिशां रा तहत चूरू जिला री न्यारी न्यारी ग्राम पंचायतों माए खेजड़ी वाटिका विकसित करी ची है। वन विभाग एक जिला एक वनस्पति रातेत खेजड़ी रा करीब 1.5 करोड़ पौधा तैयार कीना है। माना खबर नवीस बतायो कि ए पौधा बांटण रो काम बेगोई शुरू करियो जावेला।
3: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: अरब मौसम, राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल बीच घनखर ठोड़ा पारो 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। कई शहरों में दिन रा बगत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो है। हालांकि राज्य रा आतुणी हलका माए कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ रियो है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा 25 जिला माए आंधी बारिश रा आसार है। आंधी बारिश आज और कल कई हलका माए चालती रहवन री संभावना है। महकमो 8 जून उजू गर्मी रो असर बधवा सागे लू बाजण सारू चेतायो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंग्लैंड और आयरलैंड सागे T20 मुकाबला सारू भारत री टीम रो ऐलान कर दिनो है। श्रेयस अय्यर ने टीम रा कप्तान और तिलक वर्मा ने उप कप्तान बनाई चिया है। 15 साल रा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करी चियो है। वैभव ई साल री IPL होड़ माए सब 72 रन बनाया है। नौजवान खिलाड़ी प्रिंस यादव नई टीम माए शामिल करी चिया है। जापान माए फेवन वाला एशियाई खेलना और भारत रा श्रीलंका दौरा सारोई टीम चुनी ची। भारत और अफगानिस्तान री क्रिकेट टीम बीच ई सीरीज रा आज शुरू हुआ। एकला टेस्ट मैच माए भारत पहली पारी माए 368 रन बना लेना है। अरवाना 3 बल्लेबाज आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनार खेल रहा है। ऋषभ पंत 50 रन बनार वारो साथ दे रहा है। इनु पहली KL राहुल 100, साई सुदर्शन 81 और यशस्वी जायसवाल 24 रन बनार आउट हुआ। राजस्थान माए श्री गंगानगर रा मानव सुथार ई पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करण सा गए ई मैच माए खेल रहा है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रबारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनों सांचो करन वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगतरोग कार्यक्रम सुन रहे सगले ग्रामीण भाई ने और किसान भाई ने सत्यनारायण शर्मा और आप रहे हेतल भाई
1: संदीप पारिकरा घना ने घना राम राम
0: राम राम नमस्कार। और आज रो दिन है विशेष किसान भाई ग्रामीण भाई उड़ीक रिया है आज रे दिन ने क्या कि आज रे दिन वे आप मन रहा पसंद रहा गीतरला सुनना चाहे और बीरे सारू बे के जतन करे है चाहे भी आपने कागज लिखे है चाहे भी आपने मेल करे तो बिहार कागज या छाट मेल अपन लेर और बिहार पसंद रहा गीतर लो सुनाया करा।
1: बिल्कुल और सही बात तो आ भी है कि जतन जो को है वह कार्यक्रम सुने आपने जका भी भाई बहन है वह करे और जतन देखो सत्यनारायण भाई आपा भी करा कि बंगा इतना लाड़ सू भेजेड़ा जका कागदिया है या मेल है बन सगड़ा ने पढ़ना और फिर बांगी जगह फरमाइश है बिना पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश चकी है बापा करया करा
0: और कोशिश यह है कि हमेशा रंग लाया करे है और आज यारी कोशिश रंग लाई है यारा कागज या जी का है आप कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं और यार पसंद गीत लो सुना रहे हैं तो पहलो जो को गीत है बद्री व्यास और बिहार साथियान है गायड़ो चला चला रे गाड़ी डिलावर होड़े होड़े ओ सुना और कौन सुनना चाहे वो थाने बाद में बता सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ओ कानर मन्यापुर चाला जोधपुर ओज जोधपुर का कबूतर आर भाई उठता रे फुल्लरा जमोटा ना बोली गुर्रा थोड़ा बोलिया हुर्रा लागर घुमतेरा भाई लागर घुमतेरा मोटा

रोज कन मांग दूध राबड़ी नानी खाली खीर रोज कन मांग दूध राबड़ी नानी खाली खीर जिमन में जद

जीमन में जित कान्यो देखो धर्म निकलो बाल भाई कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूत कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूत हे जी मोर राम जी हे जी मोर राम जी।

पर मारा लाल मैं ए मारा लाल मैं दूध पिलाऊं कर मर कर रे कैसा न्यारा मन्या कुर चला जोधपुर ये जी जोधपुर।

0: ओ कानो गयो बाग नानी के गई लाग, कानो गयो बाग नानी के गई राग, हर नानी के गई लाग। हे जी कानो दौड़े और कानो रोए, हे जी कानो रोए नानी दौड़े कानो रोए, भाई नानी दौड़े कानो रोए, छेड़ रे दीपक राग रे भाई कौन तली सुर सुर, कान्या कह हो गई दुर। अज मगदरमल जी भाई मगदरमल जी भेद बुलाया दिया तेना कुरमुर, कैसा मनिया कुर चला जोधपुर, जोधपुर का कबूतर अरे भाई उठता रे फुर फुर, मोतर बोली बुर छोरा बोलिया हुर, लागर गिंदकड़ा भाई लागर गिंदकड़ा, मोटर पाछे कान्यो बोले भुर रे, कान्या रे मन्या मन्या कतन वन, कान्या रे मन्या मन्या कतन वन, कान्या रे मन्या।
1: गोविंद सिंह राठौड़ गायडो कान्या मन्या कुर, ये लोकगीत ने बड़े चाव से सुनना चाहे सा। गांव कलाना भादरा जिला हनुमानगढ़ सु विक्रम कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश व युद्धवीर। हरियाणा सु अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट सीताराम कांगड़ा। और
2: देखो वो आइडो है आपने कहना एकता कॉलोनी रोहतक सु सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा और तन्वी बोट। और मुरादाबाद यूपी सु अपने मेल भेजो सा मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी और मोहिनी ऋतिक। और वो एक कागद आपने कहना और आइडो है अजीत नगर मलोट पंजाब सु कागद आपने भेजो है छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सीएस बेगाना।
3: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु उपभोग और उत्पादन, यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी खासकर अमीर देशों में तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण

बढ़ता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति, विशेषकर संपन्न लोग, कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है।

0: तोसा देखो बालम रसिया अशोक सामरिया और बिहार साथियों गेड़ो आप गीतड़ो सुनियो बहुत ही चोखो गीतड़ो हो और गीतड़े ने बड़े चाव से सुनो चाहूँता सा चांदमल जी बाग गंगा सरसू जवरलाल रतनलाल सांखी मायूर प्रसाद सांखी देवेंद्र सांखी सोनू सिद्धि सांखी बड़ी गवाड़ देशनोक सु सीताराम जोशी राधेश्याम जोशी राजकुमार जोशी दृष्टि सृष्टि जगदीश और तनु और मेरठ सु अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन और जीव्यम जैन
1: और देखो मूंडसर जिला बीकानेर सु आपने कागज भेजे सा भंवर लाल ओझा महेश कुमार गोविंद और दिनेश ओझा देश नोक सु ही आगलो कागज आपना करना आयडो है गोपाल दान भोम दान और प्रकाश दान और श्री कोलायत जी सु आपने कागज भेजे फूसराज सोनी सूरज प्रकाश सोनी धर्म सोनी लालचंद सोनी और चंद्रकांता सोनी और देखो एक कागज और है आपने सामने वो आइडो है अपना कन्ने मोहम्मद सरबास डूंगरगढ़ सु मोहम्मद असगर पवार मोहम्मद अकबर पवार और मुन्नी बरकत हाजन राबिया और गुलजार और अजीज
0: और एक और बात कहूँ कि कोई भाई गीत सुन रहा है और आपकी पसंद सुनना चाहे है अगले शनिवार ने गुंजे गवा गुआड़ में तो या तो मेल करे है और मेल करना ऐसा ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com मोबाइल उठाओ और आपरी पसंद रो गीत लिखकर हमारी मेल कर सको और पानरी लिखनी है तो गुंजे गांव गुआड द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर में आपरो पोस्ट कार्ड माथे लिखकर भेज सको सा
2: मैं आकाशवाणी हूँ 90 साल की आपकी आकाशवाणी नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा
3: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

0: जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: भाई कितो मिठू आप गीत सुनायो उड़ जा रे कागा
1: और गांव नाला अब्दुल गनी
0: और अब बात करना भी ओ जो कोई तो मिठू गीतड़ो है फरमाइश किन भेजी तो आपको तो मैं नाम बांच बता दूं
1: बांचो सा
0: और देखो अपन पहलो जो को मेल है इन गाना खतर भेजियो हो रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल जय सिंह जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और एक और मेल अपन भेजे इन गाने की फरमाइश के लिए वो अपन भेजे वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी
1: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा और बिहार परिवार सदस्यगण मेरठ कैंट सू सुरेश डोम संदीप डोम अनुश्री डोम मसीता डबवाली सू रजिंदर नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग
0: और देखो एयरपोर्ट रोड अयोध्या सू आप मेल आईडो है प्रमिला पांडे और नवीन पांडे रो और नागपुर रोड तिवसा सू महेंद्र यादव कौशल और नरेंद्र यादव जी आप मेल भेजो तो उम्मीद करा कि आप अपनी फरमाइश पर वो मिठो सो लोकगीत सुन लियो होसी
2: जल द्वार का ऊंचा ठेठ पताल
3: उठो

0: तो असा महेंद्र कपूर और बिहार साथियों ने गायड़ो बाबा रामदेव रो भजन सुनियो, बहुत ही चोखो भजन अपने लोक देवता और कहो ही कहीं भजन ने सुनना चाहूँ तो असा डबवाली हरियाणा सू जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय अनिल, मीनू बाकोलिया और फाजिलका पंजाब सू भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टीवानसी खेड़ा, सालनी खेड़ा, आर वी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक खेड़ा परिवार।
1: और देखो जैन मंदिर आरी गली गांव कुरावाड़ी सू अपन ने कागज लिखे राशिद हुसैन अंसारी और नसरीन अंसारी। और दूसरो देखो मेल आपना का नाइडो है मुझ गहन जिला बालोस सू लिखनिया है चिंता राम साहू, श्रीमती नरबदिया बाई साहू, दिनेश दुलार और उर्वशी साहू।

0: और गांधी चौक रोपड़ पंजाब सू हरदेव मिका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मिका विर्क।
1: तो एक बार फिर उसने कह वहाँ सा कि नहीं अगला शनिवार ने गुंजे गांव गाड़ में गीत सुनो है तो जरूर मैंने मेल करो या लिखो कागज। ये सागई अब देखो भगत हो रही है थे देव मैंने आज्ञा मैंने और
0: संदीप पारिक ने
1: घणान घना
0: राम
1: राम राम राम।

अभी आपने सुना फरमाइशी पत्रों और ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुआर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संदीप कुमार शर्मा और सत्यनारायण शर्मा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 7:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: विद्यालय में ये समर कैंप जारी है। आइए पहले सुनते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य क्या कहते हैं।
1: शुभ नाम आपका?
2: भवानी शंकर आचार्य।
1: कैंप की आपने जो प्लानिंग की, ये क्यों की, कैसे की, क्या लगा कि हमें एक इस तरह का काम करना चाहिए?
2: सर, वैसे देखा जाए तो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं एक तो, और दूसरा हम चाहते हैं कि स्कूल के अंदर ये थोड़ा सा पकड़ भी रखें और बाहर न जाए। गर्मी का समय तो हमने शाम के समय इस कैंप को रखा हुआ है ताकि बच्चे गर्मी में भी नहीं जाएंगे और शाम के समय सभी एक ही बेस में यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे। और बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह सारी करवा रहे हैं अभी, जैसे क्रिकेट वगैरह की है, ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, मिनीचिंग की है, सबकी करा रहे हैं और सिंगिंग की भी है साथ में। तो इस हिसाब से बच्चे हमारी पकड़ में भी रहेंगे और बच्चों का आगे भविष्य भी उज्जवल रहेगा।
1: आपने जब प्लानिंग की, क्या उम्मीद थी, कितने बच्चे आएंगे और कितने आगे?
2: सर, हमने प्लानिंग की थी तब हमने सोचा था कि तकरीबन को 30-35 बच्चे 40 बच्चे आएंगे, लेकिन प्लानिंग से कुछ बढ़कर ही है हमारे पास। अभी 70-80 बच्चे हो रहे हैं अभी, और अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमने 31 तारीख लास्ट कर दिया था इसको, अब हम नहीं ले सकते।
0: और अब चलते हैं यहाँ आए शिक्षक जो कि अलग अलग कौशल विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। सबसे पहले हेयर स्टाइल और मेहंदी का कार्य कर रही है अंशु शर्मा।
1: मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप बच्चों को जो है, खासतौर से बालिकाओं को, लड़कियों को हेयर स्टाइल और मेहंदी का काम सिखा रही है। कैसा लग रहा है आपको, और बच्चियाँ कौन सी एज ग्रुप की है, और उनको सिखाने में आपको, क्योंकि लगभग वो 15-16 साल की बच्चियाँ हैं, तो सिखाने में किस तरह की आपको मेहनत करनी पड़ रही है?
3: अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी सिखाते वक्त मेरा भी इंटरेस्ट क्रिएट और हो रहा है, ठीक है। और मैं सिखा डमी पे रही हूँ, और वो भी अच्छे से सीख रहे हैं और मतलब अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। मेहंदी भी मैं सिखा रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सिखाते वक्त। यहाँ बच्चे मतलब समर कैंप में एंजॉय भी कर रहे हैं, प्लस घर पे बैठ के फ़ोन चलाने से बेटर है कि वो यहाँ आके अपने इंटरेस्ट क्रिएट करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें।
0: खेलकूद बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और अगर ये खेलकूद किसी विद्यालय में, किसी संस्थान में छोटे छोटे बच्चों को करवाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। समर कैंप में जगदीश नारायण क्रिकेट कोच के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं।
1: जगदीश नारायण जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप बच्चों को जो है क्रिकेट का अभ्यास करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, किस आपको क्या अनुभव लगता है, और सिखाने में जैसे कुछ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो क्रिकेट की बारीकियाँ जब आप बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, तो क्या अनुभव कर रहे हैं?
4: अभी ये बारीकियों के लेवल पे पहुँचे नहीं है, फिलहाल इनको बिगनर्स है, तो बेसिक्स क्लियर करवाना ज़रूरी है। जैसे डिसिप्लिन क्या चाहिए, सेक्रीफाइस क्या चाहिए। क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है इंडिया में, ये एक फेस्टिवल है, इमोशन जुड़े हुए हैं इंडिया में क्रिकेट से, तो इसके लिए बड़े बड़े सेक्रीफाइस और बड़े बड़े डिसिप्लिन ज़रूरी होते हैं, तो अभी तो इनको बेसिक्स क्लियर करवाने होता है।
1: कितने बच्चे हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हो या कैसे सिखाते हो?
4: अभी तो ग्रुप नहीं बन पा रहा, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए एक दो जने और चाहिए जो बराबर टैकल कर सके, तो सारों को ग्रुप बना के मैं अभी तो अकेले ही सिखाता हूँ।
1: क्या मानते हो कि छुट्टियों का सही उपयोग हो रहा है?
4: हाँ, वो तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि बच्चे जब फिजिकली भी एक्टिव होते हैं और मेंटली भी एक्टिव होते हैं, और उनको डिसिप्लिन आता है मेन, क्या सिर्फ बैट और बॉल नहीं होता क्रिकेट, पूरी फिजिक आपकी वैसी रिएक्ट करनी चाहिए।
0: विद्यालय की शिक्षिका भावना से हमने बात की, तब आपने पूरे कैंप की जानकारी देते हुए बताया।
1: समर कैंप लगा है, कब से शुरू हुआ, कितने बच्चे यहाँ हैं, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती, कौन सा कौशल सिखाया जा रहा है?
5: ये समर कैंप 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 15 जून तक चलेगा। इस समर कैंप में हम बच्चों को बहुत सारे स्किल सिखा रहे हैं, जैसे मेहंदी हो गया, डांस हो गया, योगा, क्रिकेट, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बच्चों का, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करवाना, ऐसे करके बहुत एक्टिविटीज़ है जिनसे बच्चों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों ही रूप से बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा।
1: कौन कौन से अध्यापक हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं?
5: यहाँ ड्राइंग सिखाने के लिए योगेंद्र पुरोहित जी आते हैं, जो बच्चों को बहुत एक क्रिएटिव तरीके से ड्राइंग सिखाते हैं, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और वो हर चीज़ को अपने दिमाग से, अपने कौशल से सीखना चाहते हैं, उसको करते भी हैं। क्रिकेट सिखाने के लिए यहाँ पे जगदीश जी ओझा और नितेश रोहित जी आते हैं, जो बच्चों को वार्म अप के साथ साथ कैसे उनको डिफेंस करना है, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे

0: स्ट्रैटेजीज बनानी है, उन सब में भी मदद करते हैं। डांस के लिए गुंजन गिरी, जो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक हर बच्चों के साथ उनकी उम्र जैसा व्यवहार करते हुए उनको अच्छा कौशल, अच्छा डांस सिखाती है। इसके अलावा हेयर स्टाइल के लिए अनुषु शर्मा मैम है, जो बच्चों को, लड़कियों को मुख्यतः, वो सिखाती है कि कैसे एक लड़की के लिए उसके जो बाल होते हैं वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिस्सा होते हैं, तो कैसे वो अपने बाल को और अच्छा बना के दूसरों के सामने और अच्छा प्रस्तुत करके खुद को और अपने घर वालों को भी गौरवान्वित महसूस करवा सकती है। इसके अलावा कपिल गुप्ता सर, जो बच्चों को संस्कृति से जोड़ते हुए उनको साफा, पाग, पगड़ी, अलग अलग पगड़ी बांधना, जैसे जैसलमेरी पगड़ी हो गई और मारवाड़ी हो गई, शेखावटी हो गई, अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ बांधना सिखाया था, जिससे बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ बाकी अपने आगे बढ़ने के लिए, जैसे अभी जैसे व्यवसाय में भी अभी इजाफा बहुत काम आ रहा है, बहुत से लोग हैं जो संस्कृति को भूल चुके हैं, बच्चे अभी जुड़ नहीं रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के साथ हमारे यहाँ योगा सिखाने के लिए भी मुकुंद जी सर आता है, जो बच्चों को सिखाता है कि शारीरिक रूप से भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है जितना मानसिक रूप से मजबूत होना है।
1: नृत्य करना स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं योग भी होता है, और नृत्य तो आजकल कैरियर भी बना रहा है। इसी विद्यालय में शिक्षिका नृत्य का काम सिखा रही है गुंजन।
2: मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप समर कैंप में बच्चों को नृत्य सिखा रही हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह का अनुभव आप महसूस कर रही हैं?
3: बच्चे सारे बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, सारे स्टेप भी अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ऐसे बच्चों को भी अच्छा लगता है, सारे डांस वांस करते हैं अच्छे से।
1: चलिए अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो इस विद्यालय में समर कैंप का आनंद लेते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर रहे हैं।
2: नाम क्या आपका?
4: धीरज पुरोहित।
2: धीरज, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है समर कैंप में आप आते हो, क्या क्या सीखते हो, कैसा लग रहा है?
4: हमको, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट और साफा सीखते हैं।
2: साफा बांधना तो बहुत कठिन काम है, आपको अब तक कितना आ गया, आपको कैसा लग रहा है?
4: मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को आधे से ज़्यादा आ गया।
2: और दूसरी चीज़ क्या बताई थी?
4: क्रिकेट।
2: अच्छा, क्रिकेट में कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है, वो ड्राई फोर्स।
2: कितनी देर आते हो यहाँ?
4: यहाँ पे हम 2 घंटे।
2: तो ऐसा नहीं लगता कि 2 घंटे मोबाइल चलाते तो ठीक रहता?
4: नहीं, दोस्तों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लगता है।
2: क्या नाम है?
5: युधिष सुतार।
2: यहाँ क्या सीख रहे हो, कैसा लग रहा है?
5: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम हेयर स्टाइल, डांसिंग और मेहंदी सीख रहे हैं।
2: 3 चीज़ें एक साथ कर रही हो ना, तो पढ़ना अच्छा लगता है कि ये अच्छा लगता है?
5: दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और छुट्टियों में तो और भी अच्छा लग रहा है, इधर आना, घर में बैठे नहीं सच।
2: अब तक हालांकि 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ में आप जो है आगे बढ़ गई हो, सीख लिया है?
5: मुझे इधर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हेयर स्टाइल में आगे बढ़ गई और डांस में भी बहुत अच्छा हो गई और मेहंदी भी सीख गई।
2: घर जाते हो तो पूछते हैं मम्मी आपने आज क्या सीखा?
5: हाँ, पूछते हैं।
2: आपके साथ और भी आते हैं बच्चे?
5: और मैं मम्मी की हेयर स्टाइल भी करती हूँ, इधर सीख के जाते हैं जो।
2: अच्छा, मम्मी की हेयर स्टाइल करने लग गए हो आप?
5: और मेरी एक छोटी बहन है, वो भी आती है।
2: थैंक यू। क्या नाम है?
6: मेरा नाम कुसुम सेन है।
2: खुशबू, क्या क्या सीख रहे हो यहाँ?
6: यहाँ पे मैं डांस, योगा और मेहंदी सीख रही हूँ और हेयर स्टाइल भी।
2: कैसा लग रहा है, तीनों चारों के बारे में अलग अलग बताओ, देखें कौन सी चीज़ जो है किस तरह से लग रही है।
6: हेयर स्टाइल में तो है ना, मम्मी के सब यहाँ से सीख के जाते, मम्मी के कर देते हैं। डांस में भी अच्छा है, और योगा में तो सर आते हैं, योगा कराते हैं, और मेहंदी मैम कराते हैं।
2: तो योग तो फिर सुबह आते हो जल्दी?
6: हाँ, सुबह नहीं आते, शाम को लगती है 5 बजे।
2: योग के एक दो नाम बता सकते हो कोई?
6: हाँ, पर्वतासन और तितली आसन,
7: तर्पण गहलोत।
2: यहाँ कैंप में क्या क्या सीख रहे हो, कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत कुछ एक्टिविटी सीखी हमने, क्रिकेट भी सीखा, खो खो भी सीखा, साफा बांधना भी सीखा, पेंटिंग भी सीखी, और भी अदर फैटिलिटी सीखी।
2: क्या फ़ायदा होता है इससे?
7: फ़ायदा मैं फ्यूचर में काम आते हैं ये सारी चीज़ें, ऐसे मतलब बॉडी लैंग्वेज और एक्टिव होती है, बहुत अच्छा लगता है हमें।
2: और खेलकूद से आगे आपका करियर भी बन सकता है ना, पता है?
7: हाँ सर, बन सकता है, क्रिकेट को, खो खो, कुछ भी हो, बास्केटबॉल।
8: मेरा नाम मैगिरी है।
2: यहाँ क्या सीख रहे हो आप?
8: यहाँ मैं क्रिकेट और साफा, काफ़ी एक्टिविटी है वो सीख रहे हैं हम, खो खो, कबड्डी और खेल रहे हैं हम।

0: कैसा लगता है?
1: यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके, बहुत मज़ा भी आ रहा है हमें, एक्टिविटी भी हो रही है इसलिए
0: मोबाइल नहीं चलाते हो?
1: बहुत कम। हाँ
0: यहाँ आए तो कुछ तो वो टाइम तो यहाँ आपका लग ही गया है ना। अच्छा, दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहते हो? आकाशवाणी से भी आपको बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होंगे, उनको क्या कहोगे कि छुट्टियों का उपयोग कैसे करें वो?
1: छुट्टियों को उपयोग हमें पढ़ने में भी थोड़ा करना चाहिए और खेलने कूदने के भी मज़े लेने चाहिए हमें।
0: कहीं आप ऐसी जगह गए हो जहाँ आपको ये एडमिशन नहीं मिला और यहाँ मिल गया, तब आपको कितनी खुशी मिली?
1: सर मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिली और मैं आगे अभी एक बार गई थी, वापस आ गई क्योंकि घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से, अब मैं वापस आगे जाऊँगी 12th करके।
2: श्रोताओं, अब सुनते हैं क्या कहते हैं योग शिक्षक।
0: यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप जो है योग की क्लास ले रहे हैं, योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को खास तौर से। छुट्टियों का सही उपयोग अगर आप मानते हैं तो क्या ये यहाँ जो हो रहा है वो दूसरी विद्यालय या दूसरी संस्थाओं के लिए भी एक संदेश का काम कर रहा है?
3: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे अभी जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं जो अभी अभी से भी प्रैक्टिस करेंगे योग का, तो आने वाले समय में ये योग के प्रति और उनकी भावना चेष्टा बढ़ेगी योग के प्रति, और उनको सुबह सुबह रोज उठकर योग सबको करना चाहिए, ये मेरे पर्सनली मानना ये आपसे।
0: यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरह से आप योग करवाते हो? कोई दिक्कत आती है आपको?
3: नहीं, बच्चों को दिक्कत तो कोई नहीं है, शुरुआत शुरुआत रहता है, पर इनको से योग आसन में जैसे तितली आसन हुए, जिन्हें अपने रूबरू तितली आसन, भुजंग आसन, ताड़ासन, ये नॉर्मल आसन जो छोटे छोटे आसन होते हैं ये करा के उनको मनोरंजन हो जाता है इनके साथ में साथ में, इसलिए कराता रहता हूँ मैं साथ में योगा।
0: 21 जून आ रहा है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कोई संदेश आपका?
3: 21 जून योग दिवस है और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, रोज़ सुबह 21 जून को आप सबको उठकर योग करना चाहिए, और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि योग दिवस, योग को शिक्षक रूप में हर स्कूल, हर कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग में, सारी जगह में योग का एक बहुत बड़ा अनुभव बनेगा। मैं यही कहता हूँ कि सभी को योग करना चाहिए, मैं खुद भी करूँगा।
0: मूलचंद जी सोनी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप इस संस्था के अंदर संगीत सिखाने का काम कर रहे हैं और समर कैंप लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों को आप कहाँ से संगीत की शुरुआत करते हैं, कौन सा स्टेप लेते हैं, क्या करते हैं?
4: इस समर कैंप में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो लगभग 6-7 साल की उम्र से लेकर के 12-13 साल तक की आयु के बच्चे हैं। तो संगीत में मैं हारमोनियम जैसे बच्चों को सिखा रहा हूँ और बांसुरी भी सिखा रहा हूँ। तो हारमोनियम में जैसे सारे गम पा धा नी जो सरगम होती है, वो सबसे पहले बच्चों को वो शुरुआत वहाँ से कर रहा हूँ, और उसके बाद जैसे सरल से सरल जो बच्चों को जो गाने आते हैं, जो खुद गाते हैं घर में बच्चे, उनकी नोटेशन जो है वो समझाने का प्रयास करता हूँ। और बांसुरी है उसमें 6 छेद होते हैं, 6 छेदों पर स्वरे जो सारे स्वर जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो अभी बांसुरी में सरगम सिखाना संभव नहीं है क्योंकि 20 दिन का कैंप है, तो सिर्फ उंगली जो है, बच्चों की जो उंगली है वो किस प्रकार बांसुरी पे रखी जाए उसका मैं प्रयास अभी कर रहा हूँ।
0: योगेंद्र जी पुरोहित, आज यहाँ हम देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर जो कैंप लगा हुआ है, समर कैंप लगा है, और आप जो है चित्रकला में इनको स्किल सिखा रहे हैं, तो क्या अनुभव आपका है और क्या आप किस तरह के, अभी जितने दिन हो गए क्या रहा?
5: मुझे पहली अच्छी बात ये लग रही है कि हर उम्र के बच्चे यहाँ पे एक साथ क्लास में बैठ रहे हैं और किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई बंदिश नहीं है कि पेंटिंग करता करता वो म्यूजिक में जा सकता है, म्यूजिक वाला, डांस वाला पेंटिंग में आ सकता है। सो में विजुअल सेंस क्रिएट किया जाए और वो विजुअल सेंस विजुअल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही संभव है। मैं इनको कॉपी वर्क नहीं करने दे रहा हूँ कि किताब से देख के बना लिया या कहीं कोई चित्र बना हुआ है उसको देख के, मैं इनके सामने ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को देख करके बनाना वो एक एक्सरसाइज है जिसे प्राइमरी एक्सरसाइज कह सकते हैं, कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना फिर मैनुअली उसको पेपर पे ट्रांसफ़र करना। तो वहाँ उनके दिमाग में आकृतियों को लेकर के एक सेंस डेवलप हो रहा है कि किसी चीज़ को देखने के बाद हम उसको विजुअल में कैसे ट्रांसफ़र करें, और यही बेसिक स्टडी है। यहाँ से इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये अनुकृति करना भूल जाएंगे, ये अपना खुद का सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, खुद का सब चित्र अपना जो होगा इनका खुद का मौलिक हो जाएगा। मतलब
2: अभिभावक क्या कहते हैं? क्योंकि अभिभावक जब तक जागरूक नहीं होंगे तब समर कैंप का पूरा फायदा बच्चों को नहीं मिल पाता है, अगर अभिभावक जागरूक नहीं है। क्या कहते हैं अभिभावक, चलिए बात करते हैं।
6: मेरा नाम राजीव।

0: चौधरी है। मेरा बेटा अभी 8 साल का है और वो समर कैंप में पहले दिन से आ रहा है, 25 तारीख से ही यहाँ।
1: आपको कैसा लग रहा है? आपने जब भेजा तो ये आपको लगा होगा कि क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन 2-5 दिन में कोई रिजल्ट आपको लगा या बच्चे से जब बात होती है?
0: नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट था। और बच्चा 5 बजे का समय है तो 4:30 बजे ही जूते वूते पहन के रेडी रहता है, और 4:30 बजे से ही गया है, चलो सर, चलो पापा, चलो पापा, चलो पापा, तो छोड़ गया। और बहुत अच्छा यहाँ पे सिखा रहे हैं ड्राइंग, और अच्छी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ड्राइंग की। क्रिकेट की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कोच है यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरह से क्रिकेट सिखाते हैं।
2: मेरा नाम विष्णु सांकला।
1: विष्णु जी, मैं देख रहा हूँ कि आपका यहाँ बच्चा आता है समर कैंप में, तो आपने यहाँ भेजने का जो निश्चय किया वो क्यों किया?
2: देखो सर जी, बच्चा जब पढ़ाई लिखाई से छोड़ के कुछ बाहर की चीज़ें सीखे, जैसे बच्चा भी मेरा सीख रहा है फेंटा बांधना, है ना, योगा करना, उससे क्या बच्चों को पता चलता है कि अपनी संस्कृति में क्या चीज़ें जुड़ी हुई है ना। जैसे योगा का उसको ज्ञान होता है तो बच्चा अपने लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करता है, इसलिए समर कैंप से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और बच्चे को कुछ फॉलो घर पे भी सीखता है, जैसे छोटा भाई इसका, उसको भी सिखाता है ये, इसलिए समर कैंप भेजने का बहुत फ़ायदा हो रहा है।
3: श्रोताओं, पिछले सप्ताह एक विशेष दिन रहा, ये था विश्व पर्यावरण दिवस, जी हाँ, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर बीकानेर में विभिन्न संस्थाओं, कार्यालयों आदि में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए, जिसमें पौधारोपण, पौधा वितरण, पर्यावरण के लिए दौड़, कपड़े के थैले वितरण और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर व्याख्यान, चर्चाएं आदि। इसी क्रम में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के तहत विश्व पर्यावरण दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित नृत्य, लघु नाटिका, निबंध, नारा, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विशेष बात यह रही कि पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन यानी पाड़सिये का भी वितरण किया गया। इसी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग ना करने के उद्देश्य से मदर्स एलिस कर्मा फाउंडेशन ने एक विशेष अभियान आरंभ किया, जिसमें 1 लाख कपड़े के बैग वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी में 50,000 अखबार के बने लिफाफे भी वितरित किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पूर्व यानी कि 4 जून को क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बीकानेर, जिला प्रशासन और जिला पर्यावरण समिति बीकानेर द्वारा रन फॉर एनवायरमेंट, कपड़ों के थैलों और पौधारोपण, पौधों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे स्थानीय वन विभाग परिसर में आयोजित किया गया। रन फॉर एनवायरमेंट जागरूकता दौड़ को हरी झंडी सुबह 7 बजे मुख्य वन संरक्षक हनुमान राम, निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानी चामी, SDM बीकानेर महिमा कसाना, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा और बीकानेर रन क्लब के ईशान शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इस रन को रवाना किया। आइए आपको भी वहीं लिए चलते हैं और देखते हैं इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में क्या हुआ।
4: पाल सिंह साइवन संसद बीकानेर, आज ये इन्वायरमेंट डे के अवसर पर रन फॉर इन्वायरमेंट का आयोजन कर रहे हैं। इसमें राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनका सहयोग मिल रहे हैं, और इसके साथ एक यहाँ जो बीकानेर रन क्लब है उनके प्रतिभागी इस दौड़ में इसमें भाग लेंगे, और साथ ही हमारे स्टाफ के लोग भी इसमें।
5: नमस्कार, मैं राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बीकानेर। आज रन फॉर एनवायरनमेंट रखा गया है क्योंकि वर्ण अपने 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है, तो उसके लिए लोगों में जागरूकता के लिए आज इसीलिए बीकानेर में बीकानेर क्लब के द्वारा आज यहाँ पे रन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये पूरे एक अपने 2 या 3 किलोमीटर के रन करेंगे और उसमें सभी को एनवायरनमेंट के लिए संदेश देंगे, और उसके बाद यहाँ पर मतलब प्लास्टिक फ्री के लिए कपड़े के बैगों का, कैनवास वाले बैगों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और अपने तुलसी के पौधों का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है।
6: मैं DFO बीकानेर जी वेंकटेश नाम है।

0: आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वंदे गंगा के तहत एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए रन फॉर एनवायरनमेंट आयोजन किया गया है। ये एक जस्ट एक दिखाने के लिए सिंबॉलिक नहीं है, ये तो लोगों में अवेयरनेस जनरेशन के लिए और एक पब्लिक मूवमेंट इसको जनरेट करने के लिए एनवायरनमेंट अवेयरनेस के तहत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से अवेयरनेस जनरेशन के लिए ये दौड़ हमको सफल यूज़ आएगा। और आज आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 200 लोग बीकानेर से इधर पहुंचा है रन फॉर एनवायरनमेंट दौड़ करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है बीकानेर में और राजस्थान में भी एनवायरनमेंट के लिए सोचने वाले लोग बढ़ रहे हैं और ये हमारे आगे वाले पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित संरक्षण कर रहे हैं। धन्यवाद
1: सर। आप खुद रन में शामिल हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है?
0: मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना लोगों को देख के मुझे भी मोटिवेशन लगा कि हम आज दौड़ में पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा तरह से सब लोगों को मोटिवेट भी करेंगे, हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सोसाइटी में ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण संरक्षण एक मूवमेंट शुरू हुआ है सोसाइटी में, ये अच्छी बात है।
2: मेरा नाम महावीर गोदारा है और मैं बीकानेर रन क्लब का मेंबर हूँ और आज यहाँ पे वन विभाग और ये प्रोग्राम रखा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले का, और अच्छा रखा है इन्होंने। यहाँ पे पर्यावरण के बारे में बताया, यहाँ पे जल संरक्षण के बारे में बताया, वर्षा का जो वाटर बारिश का पानी कैसे अपन पादर पानी बोलते हैं उसको कैसे स्टोर करके अगर उसको पिए हर हमेशा तो कोई बीमारी भी नज़दीक नहीं आएगी। और मैं तो खुद मेरे कई सालों से यूज़ करता हूँ, पुराने दादा परदादा या हमारे ऐसे काम करते थे, मैंने बीकानेर में मेरे पुराने मकान में मैंने 15 साल पुराने में ये बारिश का पानी स्टोर कर रखा है और रोज हर बार मेरा हर साल चलता है। और बाकी पर्यावरण के बारे में सजगता है और अभी रन इसके साथ दौड़ भी है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये होना चाहिए।
3: नमस्कार सर, चित्रांशु यादव दिस साइड। मैं मतलब यहाँ पर 3-4 महीने से आ रहा हूँ रेगुलरली, यहाँ पर गया मतलब थर्सडे या संडे को सारे मतलब लोग आते हैं, जितने भी बीकानेर के लोग हैं ना बीकानेर रन क्लब में, मैं यहाँ पर डेली मतलब संडे संडे को 200-250 लोग आते हैं यहाँ पर डेली, यहाँ मतलब डेली 4-5 किलोमीटर वीकेंड रन।
4: मैं प्रीति कंवर, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पे इधर वन विभाग और जिला पर्यावरण वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके लिए पर्यावरण के प्रति सभी नागरिकों को सजग और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
5: मेरा नाम धीरज राठौड़ है।
1: आज यहाँ आपको जो है कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है, जो पर्यावरण के प्रति इन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम रखा है और BRC बीकानेर रन क्लब भी इसमें सम्मिलित हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
6: नमस्कार सर, मेरा शुभ नाम नवीन कुमार जिंदल है और आज हम यहाँ पे पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री की योजना जो वंदे गंगा है उसके अभियान के तहत आज जो लास्ट सेकेंड डे है उस पे हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए जल संरक्षण के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम BRC बीकानेर रन क्लब के मेंबर के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए।
7: मेरा नाम श्रीमती हीरा है, मैं सहायक वनपाल हूँ दक्षिण रेंज से। वन विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, इसमें हमने तुलसी का वितरण किया है, पौधों का वितरण किया है और जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए जो उचित हो उसके लिए मार्गदर्शन किया है।
8: श्रोताओं, इन दिनों ख्वाजा पीर अहमद बख्श चिश्ती का 15वां उर्स चल रहा है। इस अवसर पर स्थानीय दाऊजी मंदिर के पास गली में महफिल कव्वाली, लंगर और फातिहा पढ़कर देश में सुख शांति और अमन की दुआ की गई। आइए अधिक जानकारी लेते हैं मोहम्मद हाफिजुल्ला चिश्ती से।
9: अभी उर्स हमारे चल रहा है पीर अहमद बख्श चिश्ती का, जो हमारे पीर महबूबा चिश्ती के पोते हैं, और उर्स में ये होता है कि इस ये हर वली का नहीं बनता है, अल्लाह जिसका चाहता है उसी वली का उर्स बनता है। ऐसे दुनिया में बहुत से वली है जो अलग अलग जगहों को वे आराम फरमा रहे हैं, पर अल्लाह ने जिसका उर्स बनना लिखा है और दुनिया में जिसका पर्दा जाहिर होना लिखा है उसका उर्स बनाया जाता है। जैसे कि हमारे अहमद पीर बख्श चिश्ती का बन रहा है बीकानेर में, बलवान से पीर जी है, दो पीर बाबा है, हाजी बादशाह है, महबूब बख्श जी है, बड़े

0: बड़े आस्थानों पे उर्स का कार्यक्रम होता है और उर्स के कार्यक्रम में तकरीर का प्रोग्राम होता है, दो दिन कव्वाली का प्रोग्राम होता है और लंगर भी चलता है लगातार, जिसमें हर जात का कोई भी बंदा आके लंगर खा सकता है।
1: मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके मोहल्ले में जो है आयोजन की तैयारियाँ चल रही है, आज क्या है यहाँ पर कार्यक्रम?
0: आज का जो प्रोग्राम है इसमें हमारे मेहमान खुसूसी पीर आलमगीर अशरफ साहब किचौदा शरीफ से आए हैं, वो इस्लाम का पाठ उसका बताएंगे कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ होती है, तकरीर करेंगे अपना जैसे बयान करेंगे, तो वो वली की शान भी बताएंगे कि ये वली उस पाए के हैं, वहाँ बुजुर्ग ये है, तो वो क्या इस्लामी जो कल्चर है उसके बारे में बताएंगे।
1: एक चादर चढ़ाने का जो रिवाज है वो क्या है?
0: चादर का रिवाज ये है, साल में जब उर्स का तारीख आती है तो पहले गुसल करवाया जाता है चादर वहाँ पे गुलाब जड़ से मज़ार को, उसके बाद में जो साल में जैसे ईद त्यौहार पे नया कपड़ा पहना जाता है उसी तरह साल में मज़ार पे एक बार चादर पेश की जाती है नई। ये कार्यक्रम चादर का रहता है जिसमें सारे जायरीन शामिल होते हैं और चादर पेश करते हैं।
1: तो ये था आज का बीकानेर दर्पण। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से आपका साथ हमें मिलता रहेगा। कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अगले कार्यक्रम यानी अगले शनिवार तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आपने सुना बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर थे श्री महेश उपाध्याय की, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की और संयोजन किया था श्री अमित सिंह ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अब्दुल सकूर सुलेमानी की आवाज में लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। मिनिमम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:45 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत

0: ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और

0: माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting.

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से साहित्य भारती कार्यक्रम सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के

0: लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भैया क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य

0: केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
1: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप फिर नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
2: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
1: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वो यही है। जो
2: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
1: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
2: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
1: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो

0: लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है। तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वो महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी।
0: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
4: सर आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र।
3: जी।
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है।
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
3: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति

0: इसे निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हूं
1: जी,
0: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
1: जी,
0: और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया
1: जी,
0: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी।
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना
1: जी।
0: कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है
1: जी,
0: उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षण शिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।

0: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेंगे।
2: कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
2: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
3: Born into a music-loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
2: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
3: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ

0: in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth, Pune.
1: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुरडे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर. अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से. विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है. बोल है प्यारी पग होले होले. इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी.
0: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Ashay Kulkarni and on the harmonium by Shri Makaranda Kharvandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music.

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढलामुरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकेज